शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रमाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कशिश कि सीखने से बेहतर सृजन करना सीखना होगा।
0: जी जी।
1: यानी कि श्रोताओं, मनुष्य का जीवन केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उस ज्ञान से कुछ नया रचने के लिए बना है। आज के समय में हर व्यक्ति सीखने में लगा हुआ है, कोई किताबों से सीख रहा है, कोई इंटरनेट से, तो कोई अनुभव से। लेकिन श्रोताओं, केवल सीखते रहना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम सीखी हुई बातों का उपयोग करके कुछ नया सृजन करते हैं।
0: जी
1: सीखना
0: हाँ।
1: आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी है श्रोता साथियों सृजन करना।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना दस्तूर है कार्यक्रम का, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हमारे साथियों को सुनवाए।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सीखने से बेहतर सृजन करना हमें सीखना होगा। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी हमारे युवा साथियों को यह बताया कि सीखना जीवन का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति श्रोता साथियों सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि केवल सीखते रहना ही काफी है नहीं है साथियों। असली बदलाव तब आता है जब हम सीखी हुई बातों से कुछ नया बनाना शुरू करें।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि केवल जानकारी इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि उस जानकारी को उपयोग में लाकर समाज, परिवार और अपने जीवन के लिए कुछ नया तैयार करना ही सच्चा विकास होता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: जैसा कि आपने बताया है कि आज के युवा साथी मोबाइल और तकनीक के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर दिन श्रोता साथियों हजारों वीडियो, किताबें और जानकारियां हमारे सामने हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम केवल सीख रहे हैं या कुछ नया भी बन रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: क्या हम सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां ही सुन रहे हैं साथियों, या फिर अपनी कहानी लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं?
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज दुनिया में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो केवल नकल नहीं करते बल्कि अपनी सोच से नया रास्ता बनाते हैं। अगर हर व्यक्ति केवल दूसरों को देखकर सीखता रहता और कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करता तो आज विज्ञान, कला, तकनीक और समाज इतने आगे नहीं बढ़ पाते।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि सृजन ही प्रगति का आधार है। कहा भी क्या है कि सीखो जरूर लेकिन अपनी पहचान खुद बनाओ। एक बच्चा जब चलना सीखता है कशिश, तब वो केवल दूसरों की नकल करता है लेकिन धीरे धीरे वो अपनी समझ से नए काम करना शुरू कर देता है।
0: जी हाँ।
1: यही सृजन की शुरुआत है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, पहले हम सीखते हैं फिर अनुभव लेते हैं और बाद में अपने विचारों से नया निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति केवल दूसरों की राह पर चलता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है लेकिन जो सृजन करता है वही भीड़ से अलग पहचान बनाता है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में हर नई शुरुआत भी सीखने से ही होती है। जैसे कि बचपन में हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं साथियों। फिर घर पर ही हम लोगों से व्यवहार करना भी सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि सीखने की जो ये प्रक्रिया है जागृति जी, वो इंसान को समझदार बनाती है। ये हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। जैसे कि एक छात्र पढ़ाई से सीखता है, एक किसान मौसम और खेती से सीखता है, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार अभ्यास से सीखता है साथियों, और एक खिलाड़ी मैदान से सीखता है।
1: जी हाँ।
0: यानी कि सीखने से अनुभव मिलता है और अनुभव से आत्मविश्वास पैदा होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों केवल सीखते रहना और उसे जीवन में उपयोग न करना ऐसा है जैसे कोई किसान बीज तो इकट्ठा कर रहा है लेकिन खेत में बो ही नहीं रहा है।
1: बिल्कुल। जैसे कि आज के युवाओं में जानकारी की कमी नहीं है, मोबाइल और इंटरनेट ने ज्ञान का भंडार खोल दिया है कशिश, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग केवल जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित रह जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे सीखते तो बहुत है पर अपने विचारों को जीवन में उतारने का साहस भी नहीं करते, जबकि सच्चा ज्ञान वही है जो किसी नई सोच, नए कार्य, नई प्रेरणा को जन्म दे। सृजन केवल बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों तक सीमित नहीं है श्रोताओं। एक किसान खेत में नई तकनीक अपनाकर सृजन कर सकता है, एक शिक्षक बच्चे को नए तरीके से पढ़ाकर सृजन कर सकता है, एक गृहिणी घर के कामों को आसान बनाने के लिए नए उपाय खोज सकती है, यहाँ तक कि एक छात्र भी अपनी सोच और मेहनत से नया विचार पैदा कर सकता है। सृजन हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि सृजन का मतलब ही है कुछ नया करना।
1: बिल्कुल।
0: कुछ नया पैदा करना या नई सोच पैदा करना साथियों, जैसे कि किसी समस्या का समाधान खोजना। हम देखते हैं कि एक जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका खोजे तो यह भी एक सृजन है। एक किसान पानी बचाकर खेती का नया तरीका अपनाए तो यह भी श्रोता साथियों सृजन की ही प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लड़की घर बैठे छोटा व्यवसाय शुरू करे ये भी सृजन है। यानी कि सृजन का मतलब केवल मशीन बनाना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली नई सोच विकसित करना भी होता है।
1: जी हाँ।
0: आज कई लोग बहुत कुछ जानते हैं, मोबाइल में श्रोता साथियों हजारों वीडियो सेव है हमारे, किताबें पढ़ी हुई है, मोटिवेशनल बातें याद हैं, लेकिन जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों जानकारी तभी उपयोगी होती है जब उसे काम में लिया जाए।
1: बिल्कुल।
0: जागृति जी, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ जानता हो लेकिन खुद स्वस्थ जीवन न अपनाए तो वह ज्ञान उसका अधूरा है। यदि कोई युवा सफलता के नियम तो पढ़ रहा है लेकिन मेहनत शुरू ही न करे तो सीखने का लाभ भी उसे नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: ठीक उसी प्रकार साथियों दुनिया में बदलाव उन लोगों ने किया है जिन्होंने सीखी हुई बातों को सृजन में बदला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सृजन करना बहुत जरूरी है, यानी कि सीखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें हम करते ही रहेंगे जागृति जी। लेकिन क्यों ना अभी मनोरंजन हमारे साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि सीखने से बेहतर सृजन करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश हम बात करते हैं सृजन की, तो सृजन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनका विचार गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यही डर उन्हें नया करने से रोक देती है। लेकिन याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं बल्कि सीखने और सृजन की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। और यही कहा भी गया है कशिश की, गलतियों से मत डरिए, वही सफलता का रास्ता खुलती भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही प्रश्न ये उठता है कि हमारे युवा साथियों को सृजनशील बनना क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके पास ऊर्जा होती है, नई सोच होती है और कुछ कर गुजरने का साहस भी होता है जागृति जी। और आज का समय हम देख रहे हैं कि प्रतियोगिता का समय भी है, लेकिन दोस्तों केवल डिग्री हासिल करना आपके लिए काफी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: कंपनियां, समाज और देश ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो नई सोच रखते हो जागृति जी। ऐसे में समस्या का समाधान खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सृजनशील युवा होते हैं वो हर परिस्थिति में अवसर खोजने की सीख रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे शिकायत कम करते हैं और समाधान ज्यादा खोजते हैं। ऐसे में युवा समाज में एक नई रोशनी लेकर सामने आए हैं जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में रोजगार की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बहुत से लोग केवल नौकरी पाने के लिए सीखते हैं। यदि युवा सृजन करना सीख जाए तो वे स्वयं रोजगार पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नए व्यवसाय, नए तकनीक और नए विचार समाज को आगे ले जाते हैं। श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत का सपना अभी तभी पूरा होगा जब युवा केवल सीखने वाले नहीं बल्कि सृजन करने वाले बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: सृजन व्यक्ति को भीतर से खुश भी बनाता है। जब हम अपने हाथों से कुछ नया बनाते हैं तो आत्मसंतोष महसूस होता है, चाहे वो कविता हो, चित्रकला हो, संगीत हो, खेती हो या कोई नया काम। सृजन जीवन में उत्साह भर देता है, इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका जीवन सकारात्मक बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें असफलता से डरने की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सृजनशील व्यक्ति है वह असफलता से नहीं डरता। कई कोशिशों में श्रोता साथियों, उनकी गलतियां होती है, लेकिन यही गलतियां आगे चलकर सफलता का रास्ता भी बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग जागृति जी केवल सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे अक्सर सामान्य जीवन ही जीते हैं, लेकिन जो लोग नया करने का साहस रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में यदि श्रोता साथियों पहली कोशिश सफल न हो तो निराश आपको नहीं होना है, क्योंकि हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सृजन केवल प्रतिभाशाली लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। श्रोताओं, हर व्यक्ति में कुछ नया करने की क्षमता होती है, जरूरत केवल उसे पहचानने और निखारने की है। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती है और एक छोटा विचार कभी कभी समाज की दिशा भी बदल देता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की नकल ज्यादा करने लगे हैं कशिश। कोई किसी की भाषा अपनाता है, कोई पहनावा अपनाता है, कोई जीवन शैली, लेकिन श्रोताओं असली पहचान नकल में नहीं बल्कि अपनी मौलिकता में होती है। दुनिया उसी को याद रखती है जो कुछ नया देता है। कहने का तात्पर्य यह है श्रोता साथियों कि हमें अपने बच्चों और युवाओं को ये सिखाना होगा कि वे केवल अंक लाने के लिए न पढ़े बल्कि समाज के लिए कुछ नया सोचे। शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति में रचनात्मक विकसित हो। जब शिक्षा और सृजन एक साथ चलते हैं तब समाज में विकास और सकारात्मक बदलाव आता है।
1: जी हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब कोई युवा अपने दम पर कुछ नया करता है तो वह केवल खुद नहीं बदलता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक युवा यदि गाँव में रोजगार शुरू कर रहा है जागृति जी, तो कई लोगों को काम मिलेगा।
0: जी हाँ,
1: एक युवती यदि शिक्षा के लिए अभियान चलाती है तो कई बच्चों का भविष्य बदलेगा।
0: बिल्कुल,
1: एक किसान यदि नई तकनीक अपनाता है तो इससे दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे। दोस्तों, यही सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी सपने तो देखते ही हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई कलाकार, साथी कोई सफल व्यवसायी, लेकिन सपनों को सच करने के लिए साथियों केवल सोचने से काम नहीं चलने वाला, हमें अपने सपनों को सृजन में बदलना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सपनों में मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ ही अनुशासन और नए प्रयासों की भी जरूरत होती है। ऐसे में दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: केवल दूसरों को देखकर जीवन मत बिताइए, अपने भीतर की प्रतिभा को भी पहचानने की कोशिश कीजिए।
0: जी हाँ,
1: सीखिए जरूर, लेकिन केवल सीख कर मत रुकिए, क्योंकि जो सीखा है उससे कुछ नया बनाना है आपको। अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है साथियों जिससे लोग आपको याद रखें।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जो नया सोचता है वही समाज को आगे बढ़ाता है। हमें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया करने की आदत डालनी होगी। नया विचार, नया तरीका, नई कला, नया समाधान, यही सृजन है। जब हम सृजन करना सीख जाते हैं तब हमारा जीवन केवल सामान्य नहीं रहता बल्कि प्रेरणादायक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों आपसे यही कहेंगे कि सीखने से आगे बढ़ते हैं और सृजन करके दुनिया बदलते हैं। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ और आज की इन्हीं बातों को हम यह विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखते हुए अब हमें विदा लेना होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhana.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉक रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, हमारा खास बाल जागरूकता कार्यक्रम जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन की सही दिशा भी तय करती है। आज का विषय है पोषण वाली थाली की जीत। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि थाली भी जीतती है क्या, और अगर जीतती है तो किससे? चिप्स से, कोल्ड ड्रिंक से, या उन रंग बिरंगे पैकेट वाले खाने से जिनका स्वाद तो अच्छा लगता है लेकिन असर धीरे धीरे शरीर पर पड़ता है। आज के समय में बच्चों के सामने श्रोता साथियों सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि स्वाद और सेहत के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ तुरंत मिलने वाला स्वाद जो जीभ को खुशी देता है, दूसरी तरफ पोषण जो शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन अक्सर श्रोता साथियों हम क्या चुनते हैं, वही जो तुरंत अच्छा लगे, और यहीं से शुरू होती है गलती। हमारे गांव, हमारे घर, हमारी रसोई, इन सब में पहले से ही पोषण छिपा हुआ है। दाल, रोटी, हरी सब्जी, दही, फल, ये सब साधारण दिखते हैं लेकिन असाधारण ताकत रखते हैं। फिर भी कई बच्चे इन्हें छोड़कर पैकेट वाले खाने की तरफ क्यों भागते हैं? क्या सच में स्वाद जीतता है या समझ की कमी हार जाती है? जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से इन ढेर सारी बातों को। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वॉक रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने विषय से आपको रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है पोषण वाली थाली की जीत। जी हाँ, जैसा कि गीत से पहले हमारा आपसे सवाल था कि कई बच्चे पैकेट वाले खाने की तरफ भागते हैं, क्या सच में स्वाद जीतता है या समझ की कमी हार जाती है। आज का ये नाटक भी इसी सवाल का जवाब देगा, जिसमें सिर्फ दो बच्चे हैं, कविता और सीमा। कविता जो है वो स्वाद की दीवानी है और सीमा जो है वो समझ की पहचान। दोनों की बातचीत में आपको अपने घर के बच्चे, अपने गांव की झलक, आपकी अपनी आदतें दिखाई देंगी। तो ध्यान से सुनिए, सोचिए और खुद से पूछिए आपकी थाली कैसी है, क्योंकि याद रखिए थाली सिर्फ पेट नहीं भरती, भविष्य भी बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं पोषण वाली थाली की जीत।
1: कविता, आज मैं घर जाकर रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे समोसा चाहिए, चिप्स चाहिए और वो मसालेदार कुरकुरे भी, वही मजा है खाने में, रोज दाल रोटी कौन खाए।
2: अरे सीमा, स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वाद के पीछे भागना ठीक नहीं है। शरीर सिर्फ जिप से नहीं चलता, ताकत से भी चलता है, पता है तुम्हें? और ताकत जो है वो पैकेट से नहीं, पोषण वाली थाली से मिलती है।
1: अरे मैं खाती हूँ सब और ठीक हूँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है, जो अच्छा लगे खाओ बस।
2: अरे सीमा, आज ठीक लगना और लंबे समय तक स्वस्थ रहना दो अलग अलग बातें हैं। पोषण धीरे असर जरूर दिखाता है, लेकिन गहरा असर भी करता है।
1: अच्छा बताओ कविता, तुम्हारी पोषण वाली थाली में ऐसा क्या खास है जो मेरे चिप्स में नहीं है?
2: बहुत फर्क है सीमा, पता है तुम्हें, थाली में दाल है, सब्जी है, रोटी है, दही है और फल भी है। इनमें शरीर बनाने, खून बढ़ाने, दिमाग चलाने और रोगों से बचाने की भी ताकत है। पैकेट में तो सिर्फ स्वाद है, पर अक्सर पोषण कम पाया जाता है।
1: मतलब कविता, पेट भरना और पोषण मिलना एक बात नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं है, पेट तो बहुत चीजों से भर जाता है, लेकिन शरीर को सही चीज की जरूरत होती है, बस यही फर्क समझना जरूरी है हमारे लिए।
1: कविता, मैं जल्दी थक जाती हूँ, खेलते खेलते दम फूलता है, क्या इसका भी खाने से संबंध है?
2: हाँ सीमा, बहुत संबंध है। अगर खाना सिर्फ स्वाद वाला होगा और पौष्टिक नहीं होगा तो शरीर तो कमजोर होगा ही ना। आयरन, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जरूरी है और पोषण वाली थाली शरीर को सहारा देती है।
1: तो मतलब मेरी थकान सिर्फ आलस से नहीं कविता, खाने की गलती से भी हो सकती है?
2: हाँ हो सकती है, कई बार समस्याएं वही होती हैं जहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें भूमिका निभाती है रंगों वाली थाली।
1: कविता,

0: खाते हैं। अगर इतने गलत होते तो सब क्यों खाते?
1: हाँ, तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन हर लोकप्रिय चीज अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। कभी कभी सुविधा या फिर स्वाद ज्यादा बिकता है, लेकिन रोज वही खाना खाना ठीक बात नहीं है। कभी कभार अलग भी खाया जा सकता है, पर रोज की आदत पोषण वाली होनी चाहिए।
0: तो कविता, तुम्हारे कहने का मतलब मना करना नहीं है, बल्कि दोनों में संतुलन बनाना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जीत रोकने में नहीं सही संतुलन में है।
0: कविता, दादी कहती है घर का खाना ताकत देता है, पर मैं हंसकर टाल देती थी, पर अब मुझे लग रहा है वह बात सच थी।
1: बिल्कुल सीमा, क्योंकि घर का खाना जो होता है ना, वो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि भरोसा भी देता है। हम देखते हैं कि वो ताजा होता है, संतुलित होता है और ज्यादा सुरक्षित भी होता है।
0: मतलब कविता, रोटी दाल कोई मजबूरी नहीं, ताकत है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साधारण दिखने वाली चीजें कई बार सबसे कीमती होती है और हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं।
0: कविता, मैं कई बार सब्जी छोड़ देती हूँ, बस रोटी खा लेती हूँ, क्या ये ठीक नहीं है?
1: सीमा, अगर शरीर को संतुलन चाहिए तो सबकी भूमिका होनी बहुत जरूरी है, और खाना छोड़ना तो बर्बादी भी है, इसलिए जितना चाहिए उतना ही खाना लो, लेकिन पूरा खत्म करो। यही आदत पोषण और बचत दोनों का संतुलन बताती है और दोनों अच्छी चीजें हमें सिखाती है।
0: कविता, पहले मैं सब्जी से भागती थी, अब लग रहा है दोस्ती करनी पड़ेगी।
1: हाँ बिल्कुल, थाली से दोस्ती करो और कमजोरी से दूरी बनाओ।
0: कविता, खेलते समय मैं जल्दी थक जाती हूँ, तुम ज्यादा देर तक कैसे खेल लेती हो?
1: क्योंकि सीमा, तुम्हारा और मेरा खाना फर्क डालता है। सही भोजन ऊर्जा देता है, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं होता, शरीर को सही ईंधन की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि बिना अच्छे ईंधन गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बिना नहीं चल सकता है।
0: मतलब कविता, पोषण वाली थाली खेल भी जिताती है?
1: हाँ बिल्कुल, और यही तो असली जीत है।
0: अच्छा, अगर मैं आज से ही थाली सुधारूं तो क्या फर्क पड़ेगा?
1: धीरे धीरे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा सीमा, ताकत, ध्यान, पढ़ाई, खेल सब पर असर दिखेगा, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बदलती, पर शुरुआत एक दिन से हो सकती है।
0: तो ठीक है, आज से मैं चिप्स कम, फल ज्यादा खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक कम, पानी ज्यादा पीऊंगी और सब्जी से दोस्ती करूंगी।
1: बिल्कुल, अब तुम समझ रही हो मेरी बात को, बस यही तो पोषण वाली थाली की जीत है।
0: कविता, पहले मैं सोचती थी स्वाद ही जीतता है, पर अब समझ आया असली जीत सेहत की है। पेट भरना काफी नहीं है, शरीर को सही पोषण चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, और जो बच्चा ये समझ लेता है वह खुद को मजबूत बनाता है। थाली छोटी जरूर दिखती है, लेकिन असर बहुत बड़ा करती है।
0: आज से मेरी थाली में रंग होंगे, संतुलन होगा और समझ होगी। अब मुझे पता है असली हीरो पोषण वाली थाली में है।
1: हाँ बिल्कुल, और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि दाल रोटी सब्जी खानी है, ताकत अपनी रोज बढ़ानी है। रंग बिरंगी थाली जीते, स्वस्थ बचपन आगे जीते।
2: तो साथियों, आपने सुना स्वाद और सेहत की इस बातचीत में जीत किसकी हुई? पोषण वाली थाली की। याद रखिए कि बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, अच्छी बढ़त की नींव सही भोजन है। थाली में संतुलन रखिए, रंग रखिए, पोषण रखिए, यही असली जीत है। तो हमने आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से पोषण वाली जो थाली है वो हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, आज की कहानी ने हमें यह नहीं कहा कि स्वाद छोड़ दो, बल्कि यह सिखाया कि संतुलन सीखो। जो थाली रंग बिरंगी होती है वही शरीर को असली ताकत देती है। जब बच्चे अपनी प्लेट में सही चीजें चुनना सीख जाते हैं तो वे अपनी सेहत की जिम्मेदारी भी खुद उठाने लगते हैं। यही आदत उन्हें आगे बढ़ाती है। आज घर जाएं, अपनी थाली देखें और सोचें कि क्या इसमें पोषण है। अगर नहीं तो बदलाव आज से शुरू करें। और कहना चाहेंगे कि एक माँ की रसोई, एक किसान की मेहनत और एक बच्चे की सेहत, ये तीनों एक थाली में मिलते हैं। जब हम उस थाली का सम्मान करते हैं, सही भोजन चुनते हैं, तो हम सिर्फ खुद को नहीं पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाने बैठें, तो याद रखें कि आपकी थाली आपकी ताकत बने और आप समझदारी चुने। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत कर हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि मिट्टी ना कटाव ने अपने हरते रोकी सका ने कई कई वातन नु अपने ध्यान राखवू है। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक घणा कानी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मरे करा अपनी वाते। तो भाई बोनो आप हमारे रहसु आपड़ू रेडियो अपनी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન્ડ બોનું ગીત તો અહીં શું પૂરું નળ. ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણીમાં સ્વાગત કરો હું અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે આપણે ગીત કી પહેલા વિશે ઉતાર્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે મિટ્ટી કટાવને આપણે હરતે રોકી શકન કઈ કઈ વાતનું આપણને ધ્યાન રાખવું હે. તો બેન્ડ બોનું અણ વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહે મનીષજી. તો સૌ થી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાતન મોરે કર આપણી વાતે. सर नमस्कार.
1: नमस्कार अंजलि जी.
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में.
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बारिश आने से पहले ही मिट्टी कटाव के जो उपाय हैं उन्हें कैसे अपना सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश का जो मौसम है वो आने वाला है और हम देखते हैं कि बहुत सी जगह थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है. ऐसे में हमारी जो खेत की मिट्टी है वो बहकर न चली जाए उसके लिए क्या क्या उपाय हमें अपनाने हैं और हमारे जीवन में मिट्टी का क्या महत्व है.
1: जी बिल्कुल, वास्तविकता में अभी का जो समय है और हमारा वागड़ क्षेत्र जो है इसमें मिट्टी का कटाव हमारी कृषि की उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये वर्षा आधारित क्षेत्र है और इसमें जो वर्षा होती है वो न्यूनतम 700 से जो है 1000 मिलीमीटर या कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है. तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा जरूरी हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से हमारी कृषि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और मिट्टी के साथ हमारे पर्यावरण के संरक्षण को बनाए रखने के लिए इसके कटाव को किस तरह से रोका जाए जिससे हमारी उपजाऊ मिट्टी बहके ना जाए.
0: बिल्कुल.
1: और हमारी जो अमूल्य मिट्टी है उसको हम हमारे खेत में ही या हमारे गांव में ही बचा के रख पाए.
0: बिल्कुल सर.
1: तो यदि हम मिट्टी के कटाव को रोकने की बात करते हैं तो इसके लिए प्रमुख रूप से हम इनको वर्गीकृत करके भी देख सकते हैं जिससे इनको समझना और करना भी हमारे लिए ज्यादा आसान हो सके. तो एक होते हैं इनमें कुछ प्राकृतिक उपाय, दूसरे यांत्रिक उपाय होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और तीसरा कुछ जैव उपाय होते हैं. जैव उपाय प्राकृतिक उपायों की तरह ही होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: पर इनमें थोड़ा सा अंतर होता है. तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनमें जो अंतर हैं और किनको इनको करके किस तरह से हम हमारी मिट्टी और पर्यावरण दोनों का संरक्षण करते हुए हमारी कृषि की उत्पादकता को जो है बनाए रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन उपायों को अपना कर ही हम हमारी मिट्टी को बचा सकते हैं और खेती में मिट्टी का जो महत्व है हम सभी भली भांति जानते हैं. तो सर क्या ऐसे उपाय हमें करने की जरूरत है.
1: जी, यदि हम स्थानीय उपायों में या प्राकृतिक उपायों की बात करें तो प्राकृतिक उपायों में जो हमारे स्थानीय उपाय हो सकते हैं उसमें सबसे पहला है कि हमारी जो ढलान वाली जगहें हैं वहां पे हमको जो है कुछ बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली घास का रोपण करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: जिससे दो तरह के फायदे हैं. एक तो हमारे पशुधन के लिए लंबे समय तक इससे घास मिलेगी और उसकी जड़ों की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है कि ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है वो इसको बांध के रखती है.
0: बिल्कुल.
1: और उस मिट्टी को बिल्कुल नहीं बहने देने से जो है वो रोकती है और इनका फैलाव जो होता है वो भी मिट्टी को संरक्षित करता है. क्योंकि आने वाला पानी जब हमारी मिट्टी के ऊपर सीधा गिरता है तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को बहाता है.
0: बिल्कुल.
1: या मिट्टी की जगह को परिवर्तित कर देता है. तो जब इस तरह की घनी घास हम लगाते हैं तो इससे सीधे हमारी मिट्टी पे या जमीन पे वो पानी न गिर के पहले उनकी पत्तियों पे गिरता है और उसका जो बहाव है उसको वो कम कर देता है. तो इस तरह की जो भी स्थानीय घास हमारे पास उपलब्ध है हम उनको जो है लगा सकते हैं. इसके बाद यदि हम बात करें कि ढलान वाली जगहों पे मिट्टी के कटाव को किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं तो ढलान वाली जगह के समानांतर हमको जो है खेत बनाना चाहिए. तो खेत बनाने का मतलब यहाँ है कि हम जो जुताई करते हैं उसको ढलान के समानांतर करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: न कि समान. यानी कि ढलान ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो हमको जुताई ऊपर से नीचे की तरफ न करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जिससे आने वाले जो पानी है और उसके बहाव को हम नियंत्रित करके हमारी मिट्टी के कटाव या बहाव को रोक पाते हैं। इसी तरह से यदि हम इसमें बात करते हैं तो अंतर्वर्ती वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिसमें हम खेतों के किनारे पे या ढलान के बीच बीच में कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो पानी के बहाव के साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और इससे हमारी भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: अगर जिस तरह से हमने बात की कि हमारे स्थानीय और प्राकृतिक उपाय क्या हो सकते हैं, इसी तरह से यदि देखें तो दूसरा हमने जो बात की थी उसके अनुसार हम जो है कुछ यांत्रिक उपायों को भी अपना सकते हैं। क्योंकि तुरंत में यदि हम बात करें कि हम अपने ढलानों पे उस तरह के पेड़ नहीं लगा पाए हैं या घास नहीं लगा पाए हैं, तो तुरंत इनको लगाना तो संभव है पर इनके लाभ को ले पाना संभव नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस स्थिति में हम तुरंत वाली स्थिति के लिए यांत्रिक उपायों को अपना सकते हैं, जैसे हम कंटूर बंडिंग कर सकते हैं। तो जो भी हमारी ढलान वाली जगहें हैं या खेत है उसके समानांतर मिट्टी के ऊपर जो है छोटे छोटे पत्थर के बांध बना सकते हैं, छोटे छोटे, ताकि बहने वाले पानी को जो है नियंत्रित किया जा सके और उसके साथ में जो मिट्टी बह के आ रही है वो उसको रोक के रखेंगे। तो इस तरह से हमारी मिट्टी के कटाव और हमारी मिट्टी के होने वाले नुकसान को हम इससे नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से जो है स्टोन बंडिंग की यदि बात करें तो हम पत्थर को ही बांधने की बात कर रहे हैं इसमें भी, तो इसमें यह होता है कि ऊपर की तरफ हम छोटे छोटे कंटूर बनाते हैं और नीचे आके बड़ा बनाते हैं। तो जो थोड़ी बहुत मिट्टी बह के आई है या छोटे बहाव के साथ पानी जो तेजी से अंत में बह के जाना चाहिए उसको वो पूरी तरीके से रोकता है। इसके भी हमें वही लाभ मिलते हैं, हमारे भूमिगत जल को ये बढ़ाता है, हमारी मिट्टी के कटाव को रोकेगा और स्थायी रूप से धीरे धीरे हमारी संरचना को भी जो है ये सुधारने में मदद करता है। तो हमारे खेत की संरचना भी इससे सुधरना शुरू होती है। गली प्लग की बात करें तो ये भी एक यांत्रिक उपाय हो सकता है, और तो जहां पानी ज्यादा तेजी से बहता है वहां हम छोटे चेक डैम या बोरी बांध बना सकते हैं। इनसे हम पानी के बहाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं, पानी को एकत्र भी कर सकते हैं, भूमिगत जल को भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यदि बड़े जल प्रवाह को हम रोकने की बात करें तो उसके लिए चेक डैम या एनीकट, जिसमें हमें सरकार के साथ मिलकर योजना बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी पंचायत के साथ समन्वय करने की जरूरत है, तो इनको अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके से उसी तरह से हमको फायदा करते हैं कि ये हमारी मिट्टी के बहाव को रोकेंगे, पानी के बहाव को नियंत्रित करेंगे, पानी को एकत्रित करेंगे, हमारे भूमिगत जल को बढ़ाएंगे, और साथ में इससे जो अंत में सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि हमारी जो मिट्टी थोड़ी बहुत बह के आ जाती है वो इन चेक डैम्स और एनीकट में आके रुक जाती है। तो जब ये खाली होते हैं तब हम अपनी मिट्टी को वापस ले जाके हमारे खेतों में डाल के हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति को और ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय में स्थानीय उपाय बताए, यांत्रिक उपाय बताए, यही सर जल प्रबंधन के क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं?
1: जी, तो जल प्रबंधन ही हमारा जो है, वैसे देखा जाए तो जल और मिट्टी को तो अलग करके नहीं देखा जा सकता, पर क्योंकि जल प्रबंधन इसका एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना हम इसको नहीं देख सकते।
0: बिल्कुल।
1: तो जल प्रबंधन के उपाय भी हमारी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल के जो है प्रबंधन इसके लिए जरूरी है। तो एक छोटा सा स्थानीय उपाय है कि हम जो है थावला बनाएं। तो पौधे के चारों ओर यदि हम थावला बना देते हैं तो थावला बनाने से जो है वहां पे पानी रुकेगा, और थावला क्योंकि थोड़ा सा गहरा होता है और उसके साइड में बॉर्डर ऊंची होती है तो इससे हमारी मिट्टी का बह के जाना भी जो है रुकना सुनिश्चित होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये हम हमारे पेड़ या पौधों के आसपास जो है इसको बना सकते हैं। कई सारी जगहें हैं जहाँ पे या तो ऐसा लगता है कि पानी कम आएगा या कम पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा जल कम होता है, तो वहाँ विशेष रूप से थावला बना के ही जो है बारिश की खेती या अन्य खेती मौसम में की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जिससे अधिक समय तक वहाँ पे जो है नमी और जल का प्रबंधन हो पाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि हमें जल का प्रबंधन कैसे करना है। यही कृषि प्रबंधन के लिए भी हमें इस समय कुछ उपाय करने की जरूरत है, तो वो हम क्या कर सकते हैं?
1: जी, कृषि अंतर्गत जो हम प्रबंधन या उपाय कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहली चीज जो देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी मिट्टी और पानी का जो नुकसान होता है या कटाव होता है या अपव्यय जिसको बोल सकते हैं वो होता है, तो ये ढलान वाली जगहों पे ज्यादा होता है। तो ढलान वाली जगहों पे हमको सीढ़ी नुमा खेती करने की आवश्यकता है, जिससे हर सीढ़ी पे हम हमारी मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करके उसको रोक सकते हैं। इससे आसानी से हम बहाव और कटाव दोनों को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयोगी खेती की पद्धति है जिसको हम ढलान पे सीढ़ी नुमा खेती के रूप में जानते हैं। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पे भी कई जगह पे इसको करते देखा गया है और ये हमारी परंपराओं में शामिल था।
0: बिल्कुल।
1: पर कहीं ना कहीं अब समय स्थितियों के परिवर्तन के कारण इसको कम देखा जाने लगा है, पर इसको करना जो है एक बेहतर उपाय है।
0: बिल्कुल।
1: उसी के साथ में यदि हम करना चाहें तो फसल को बदलना या ज्यादा तरह की जो है फसल को लगाना, ये दोनों चीजें जो है बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि हम खेत में लगातार जब फसलों को बदलते हैं तो इनकी जड़ों की संरचना किसी की गहरी होती है, किसी की उथली होती है, किसी की फैली हुई होती है, किसी की बांधने वाली होती है। तो अलग अलग तरह की फसलों की जो संरचना है वो मिट्टी को अलग अलग तरह के पोषक तत्व भी प्रदान करती है और मिट्टी की जो गहराई है उसको सुधारने में भी जो है अपना योगदान देती है।
0: बिल्कुल सर।
1: दूसरा, यदि हम अलग अलग तरह की फसलों को एक साथ लगाने योजना बनाते हैं तो इससे भी हम हमारे मिट्टी और पानी के नुकसान को जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने फसल बदलने की बात की, इसी तरह से जब अलग अलग तरह की फसलें हम लगाते हैं तो इनकी जड़ों की जो संरचना होती है वो अलग अलग तरीके से हमारी मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करती है और इसके कटाव को भी नियंत्रित करती है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो एक और चीज होती है जिससे हम हमारी मिट्टी के कटाव और पानी के होने वाले नुकसान को भी जो है कम कर सकते हैं, इसको हम जब हमारे खेत खाली हो तब हम मूंग उड़द जैसी जो है मिट्टी को ढकने वाली फसलें बोए। इससे हमारी मिट्टी जो है जब ढकी रहेगी खाली समय में तो उससे हमारी मिट्टी में जो जल संचयन क्षमता है
0: बिल्कुल
1: वो बढ़ेगी, तो अधिक से अधिक पानी को जो है ये सोख पाएगी और मिट्टी में जैव तत्व बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की फसलों को भी समय समय पे लगा के आने वाले समय में होने वाले हमारे मिट्टी के कटाव और पानी के नुकसान को हम जो है कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें किन किन उपायों को अपनाना है, तो सर अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: अंत में हम जो हमेशा बात करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की। तो बहुउद्देशीय कृषि वानिकी हर किसान को जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं, ये पानी का संरक्षण करते हैं, इससे हमें चारा हमारे पशुधन के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, हमें हमारे भोजन को पकाने के लिए लकड़ी मिलती है, हमें छाया मिलती है और समय समय पे मौसम के अनुसार हमें जो है हमारे परिवार के पोषण के लिए फल और अन्य सामग्री भी जो है इससे मिलती है। दूसरा, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लगातार गिरते रहने से हमारी मिट्टी को अनेक तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध और संपन्न बनाती है।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों को बताया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ.
0: મેન મોનો જેમ કે આવડે આપણે વેસ્ટ મે મનીષજી જોડે તક હતા અને એણે આપણને ઘણા કાના તરીકા બતાડ્યા હે જેને માધ્યમ થકી આપણે મિટ્ટી કટાવને રોકી શક. આશા કરો હું કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પાડવાનો. તો સૂટા તો પાડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર ગીત તમારે પડો સૂટા.

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, परंपरागत वाद्य यंत्रों का क्या महत्व है और ये वाद्य यंत्र से हम किस तरह से आनंदित होते थे, उत्साहित होते थे और अपने घरों में खुशियां मनाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

रे रे भाया गावढाणी मा के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नोरण को वागे सबने के जोरे।

0: रे रे भाया गावडाणी मां के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नो रण को वागे सब निके जोरे अरे रण को वागे रे रे भाया ढोल कुंडी वागे रे रे भाया गाव गाव में के जोरे पुरानो या पड़ो वाद्य यंत्र सबने के जोरे अरे पुराण वाद्य यंत्र थकी हमारी जिंदगी बसेगा भई अरे पुराण वाद्य यंत्र थकी हमारो समाज सुधरेगा भई रे भाया गावठाणी में के जोरे अरे के जोरे आपड़ा गांव में सबने के जो वाद्य यंत्र निवास अरे सबने के जोरे रे भाया सबने के जोरे रे भाया गावठाणी मां के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नो रण को वागे सबने के जोरे रे भाया ढोगाव के जोरे अरे के जोरे ढोल कुंडी नो रण को वागे सबने के जोरे।
1: असीम की प्रभु काका आप गीत ने माध्यम तक की अपने भाई बहनों ने परंपरागत जो वाद्य यंत्र है इन महत्व ने बारे में घणो असल संदेश आलो है तो आपनो मु धन्यवाद करू चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम तक की जुड़े ने हमने अटली अच्छी जानकारी आली।
2: धन्यवाद
1: जागृति जी। जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रभुलाल जी जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र है उनका एक अलग ही महत्व है। लेकिन अभी के समय में आधुनिकता के बढ़ते कई ऐसे युवा साथी हैं जो इन सारी चीजों से दूसरी ओर रुक कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो डीजे हैं उन पर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो किस तरीके से हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं वो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
3: जी हाँ।
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
3: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वाद्य यंत्रों को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है जोड़ों में दर्द, उसके कारण और उपाय को लेकर। कशिश, हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द आजकल एक आम समस्या बन गया है। यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। हम देखते हैं कि बदलती जीवन शैली, गलत खान पान और शारीरिक मेहनत की कमी इसके मुख्य कारण माने जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो सही समय पर इसका उपाय किया जा सकता है और दर्द से राहत पाई जा सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से आज कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ,

0: सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे कि डरने के बजाय सजग
1: बिल्कुल
0: डर समस्या को बड़ा बनाता है
1: अवलोकन क्या है तो श्रोता साथियों किसी भी परिस्थिति व्यक्ति समस्या या घटना को बिना घबराए बिना पूर्वाग्रह के और पूरी जागरूकता के साथ देखना और समझना जब हम सजग होकर अवलोकन करते हैं जागृति जी तब हम केवल सतह नहीं देखते बल्कि कारणों को भी समझने लगते हैं
0: बिल्कुल
1: उदाहरण के लिए यदि खेत में फसल कमजोर हो रही है तो घबराने के बजाय किसान मिट्टी पानी खाद और मौसम का अवलोकन करता है यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है तो समझदार अभिभावक उसे डांटने के बजाय उसकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं
0: जी हाँ।
1: यदि समाज में कोई समस्या है तो उसका समाधान केवल शिकायत करने से नहीं बल्कि उसके कारणों को समझने से निकलता है कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सजग अवलोकन हमें वास्तविकता से जोड़ता है जबकि डर हमें भ्रम और आकांक्षाओं में उलझा देता है
0: बिल्कुल अंजलि हमारे श्रोता साथियों से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में कम अंक मिल जाए यदि वो डर जाएगा तो वो स्वयं को असफल मानने लगेगा अंजलि
1: बिल्कुल
0: लेकिन यदि वो सजग अवलोकन करेगा तो वो समझेगा कि गलती कहाँ हुई है तैयारी में क्या कमी रह गई है और आगे कैसे सुधार किया जा सकता है
1: बिल्कुल
0: डर समस्या को बड़ा बनाता है जबकि अवलोकन समाधान का रास्ता दिखाता है डर कहता है तुम नहीं कर सकते सजग अवलोकन कहता है देखो समझो और फिर प्रयास करो
1: बिल्कुल
0: हम कह सकते हैं कि आज के जो श्रोता साथी है वो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अंजलि जैसे कि पढ़ाई हो गई करियर प्रतियोगिता सोशल मीडिया और भविष्य की चिंताओं के बीच कई बार ये तनाव और डर का शिकार हो जाते हैं यदि श्रोता साथी केवल डर के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो वे अपने अवसर खो देंगे
1: बिल्कुल
0: लेकिन यदि वे परिस्थितियों को समझेंगे सही जानकारी जुटाएंगे और धैर्य पूर्वक सोचेंगे तो वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे इसीलिए श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप आत्मविश्वासी बनिए ये हमें गलत रास्तों और अफवाहों से बचाएगी तथा सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी
1: बिल्कुल जागृति जी आपने सही कहा सच्चे स्वराज में सजग अवलोकन का एक अलग ही महत्व है
0: बिल्कुल
1: स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है श्रोता साथियों क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों में स्वराज का अर्थ था अपने ऊपर शासन करना अपने विचारों और भावनाओं को समझना और सही दिशा में उनका उपयोग करना
0: बिल्कुल
1: जब कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर डर जाता है तो वह अपने मन का मालिक नहीं रह जाता लेकिन जब वह शांत होकर परिस्थिति का अवलोकन करता है तब वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनता है यही आंतरिक स्वतंत्रता सच्चे स्वराज की नींव है स्वराज का अर्थ है जागरूक नागरिक बनना सही और गलत को समझना समस्याओं से भागना नहीं समाधान खोजने की आदत विकसित करना और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना
0: बिल्कुल अंजलि यही हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें कहना चाहेंगे कि प्रकृति से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है जैसे कि प्रकृति हमें सजग अवलोकन का अद्भुत संदेश देती है
1: बिल्कुल
0: किसान बीज बोने के बाद हर दिन खेत का निरीक्षण करता है वो घबराकर फसल को खींचकर पड़ा नहीं करता बल्कि धैर्य और अवलोकन के साथ उसकी देखभाल करता है
1: बिल्कुल
0: इसी प्रकार हम देखें कि पक्षी भी घोंसला बनाने से पहले आसपास के वातावरण को ध्यान से देखते हैं वे जल्दबाजी नहीं करते बल्कि सही स्थान चुनते हैं प्रकृति का हर जीव हमें ये सिखाता है श्रोताओं की सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सजगता भी जरूरी है
1: बिल्कुल जागृति जी आपने सही कहा तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में
0: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें सजग अवलोकन करना है, यही बात करें तो आज समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: बेरोजगारी, पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और डिजिटल भ्रम, यदि हम केवल डरते रहेंगे श्रोता साथियों तो समाधान नहीं खोज पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: यदि हम समस्याओं का गहराई से अध्ययन करेंगे, कारणों को समझेंगे, मिलकर काम करेंगे तो बदलाव संभव है।
1: बिल्कुल।
0: एक जागरूक समाज डर से नहीं बल्कि समझ से आगे बढ़ता है, और इस समझ के लिए हमें सजग अवलोकन की आदत को विकसित करना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: इसके लिए हमें तुरंत निष्कर्ष पर नहीं जाना है, हमें उस घटना को देखकर उसकी पूरी छानबीन करनी है और निर्णय पर जाना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब हम तुरंत निर्णय पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो कार्य है वो बिगड़ने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, प्रश्न पूछें, क्योंकि हर समस्या के पीछे कारण अवश्य होता है। अपने आप से पूछें कि यह क्यों हुआ, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, और शांत रहना सीखें।
1: जी हाँ।
0: घबराहट में जागृति जी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए शांत रहकर हम बेहतर तरीके से जब स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हम निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों ने एक नया व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया। अचानक बाजार में मंदी आ गई। पहला युवक डर गया, उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया और उसने प्रयास करना छोड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: दूसरे युवक ने स्थिति का सजग अवलोकन किया, उसने देखा कि लोगों की जरूरतें बदली है, उसने अपने काम में बदलाव किया है और नई मांग के अनुसार सेवाएं देने लगा है। कुछ समय बाद उसका व्यवसाय सफल हो गया। जब उससे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मैंने डर को नहीं परिस्थिति को देखा है। ये कहानी श्रोता साथियों हमें बताती है कि कठिन समय में घबराने के बजाय समझदारी से स्थिति का अध्ययन करना बहुत लाभदायक होता है।
0: बिल्कुल।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले स्वयं को शांत रखना जरूर सीखें। जब मन शांत होता है तभी सही अवलोकन संभव होता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, किसी भी सूचना या परिस्थिति को तुरंत सही या गलत मानने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। तीसरा, अधिक सुने और कम प्रतिक्रिया दें। कई बार उत्तर हमारे सामने ही होता है अंजलि, लेकिन जल्दबाजी के कारण हम उसे देख नहीं पाते।
0: जी जी।
1: और इसी के साथ चौथा है श्रोता साथियों कि अपने अनुभव से सीखें। हर सफलता और असफलता एक शिक्षक की तरह होती है। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि शांत मन और खुला विचार सजगता का यही आधार है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी रास्ते अनजान होंगे और कभी परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होंगे, लेकिन ऐसे समय में अंजलि हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
0: जी जी।
1: याद रखिए, डर आंखों के सामने धुंध पैदा करता है, जबकि सजग अवलोकन उस धुंध को हटाकर सच्चाई दिखाता है। और जो व्यक्ति परिस्थिति को समझना सीख जाता है वो कठिनाइयों के बीच भी अवसर खोज ही लेता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि जीवन में चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होंगी। हर दिन कोई नई परिस्थिति, नया प्रश्न और नई परीक्षा सामने आएंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये हमारे हाथ में है श्रोता साथियों कि हम उसका सामना कैसे करें। क्या हम डर के कारण पीछे हटेंगे या फिर सजग होकर परिस्थिति को समझने और उसका समाधान खोजेंगे।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए कि अंधेरे कमरे में खड़े होकर डरते रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन यदि हम एक दीपक जलाकर चारों ओर देखना शुरू करें तो रास्ता दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कह सकते हैं जागृति जी कि सजग अवलोकन वही दीपक है जो भ्रम को दूर करता है और समझ की रोशनी फैलाता है। सच्चा स्वराज तब शुरू होता है जब हम अपने मन के डर को पहचानते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और जागरूकता के साथ जीवन का सामना करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें संकल्प लेना है कि हम हर समस्या को घबराहट से नहीं समझदारी से देखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: हर चुनौती से भागेंगे नहीं बल्कि उससे सीखेंगे और डर के बजाय सजग अवलोकन को अपना साथी बनाएंगे।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जीवन की राह में अंधेरा तब नहीं होता जब समस्या सामने आती है। अंधेरा तो तब होता है जब हम डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: डर हमें कमजोर बनाता है, जबकि सजग अवलोकन हमें सच्चाई से परिचित भी कराता है। जब हम परिस्थितियों को ध्यान से देखते हैं अंजलि, समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तब वही कठिनाइयां हमारे लिए सफलता की सीढ़ियां बन जाती है।
0: जी जी।
1: इसीलिए याद रखिए श्रोता साथियों, नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से डर कर रुकती नहीं बल्कि उन्हें समझकर अपना मार्ग बना लेती है।
0: बिल्कुल।
1: उसी प्रकार जीवन में भी हमें डर कर पीछे नहीं हटना है बल्कि सजग होकर परिस्थितियों को परखना है, क्योंकि जो व्यक्ति देखने, समझने और सीखने की कला सीख लेता है उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम डर के नहीं समझदारी और सजगता के साथ जीवन जिए। हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।
0: जी,
1: क्योंकि डर कदमों को रोकता है, सजग अवलोकन रास्ते खुलता है। जो जीवन को ध्यान से पढ़ता है अंजलि, वही अपनी मंजिल खुद लिखता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
2: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो, कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
3: अरे दीदी क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
2: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध दही दालें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
3: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
2: ये हुई ना बात गोरी।
0: याद रहे गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं हमारा प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी समस्या की जो आज गांव से लेकर शहर तक लाखों युवाओं के मन में चिंता, डर और निराशा पैदा कर रही है, यह है बेरोजगारी। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि जब पढ़ाई पूरी हो जाए, मेहनत करने की इच्छा भी हो लेकिन काम न मिले, जब घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हों, जब लोग पूछे कि अब क्या कर रहे हो और हमारे पास कोई जवाब न हो, तब मन टूटने लगता है। लेकिन साथियों, याद रखिए कि बेरोजगारी जीवन की हार नहीं है, यह संघर्ष का एक दौर है। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह मुश्किल समय भी हमेशा नहीं रहता। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बेरोजगारी में किस तरीके से उम्मीद हमें बनाकर रखनी है ताकि हम हमारे जीवन में कई सारी परेशानियों से बचे रहें। तो बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए कार्यक्रम का सुनते हैं पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि बेरोजगारी में उम्मीद कैसे बनाए रखें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बेरोजगारी केवल पैसों की नहीं मन की भी समस्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बेरोजगारी का मतलब सिर्फ नौकरी न होना है, लेकिन दोस्तों ये बात कोई सच नहीं है। सच ये है कि बेरोजगारी इंसान के आत्मविश्वास को भी कमजोर करने लगती है। धीरे धीरे मन में कई सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्या मेरी पढ़ाई बेकार हो गई, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में उठते हैं और यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि काम न मिलना आपकी काबिलियत की कमी नहीं है। कई बार परिस्थितियाँ, अवसर और समय हमारे अनुसार नहीं होते, इसलिए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। यही अब बात आती है कि आखिरकार ऐसी स्थिति में हम उम्मीद कैसे बनाए रखें या उम्मीद क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, उम्मीद वह ताकत है जो इंसान को गिरकर भी उठना सिखाती है। जिस व्यक्ति के पास उम्मीद होती है ना दोस्तों, वह खाली हाथ होकर भी आगे बढ़ता रहता है। कहते हैं ना कि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उस दिन वह कोशिश करना भी छोड़ देता है। अगर किसान पहली फसल खराब होने पर खेती छोड़ दे, अगर बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे, अगर पक्षी हवा के डर से उड़ना छोड़ दे, तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कठिन समय में उम्मीद बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ अब बात आती है दोस्तों कि बेरोजगारी में उम्मीद बनाए रखने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई देती है। कोई नौकरी में, तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई विदेश चला गया। ऐसे में दोस्तों बेरोजगार जो युवा हैं वो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि हर इंसान की जिंदगी का समय अलग होता है। किसी ने क्या खूबी कहा है कि किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा मत रोकिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आज कोई आपसे आगे है, लेकिन कल आपकी मेहनत आपको उससे भी आगे ले जाए। इसलिए खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। बेरोजगारी का समय केवल इंतजार करने का समय नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। नई चीजें सीखिए, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल से काम, ऑनलाइन फॉर्म भरना, सिलाई, खेती की नई तकनीक, पशुपालन, बोलने की कला, छोटा व्यापार, सोशल मीडिया का सही उपयोग। आज ये जो हुनर है वो बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि जिसके पास हुनर है उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो जैसा कि कार्यक्रम में दोस्तों हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि बेरोजगारी में भी हम उम्मीद बनाकर कैसे रख सकते हैं और हम इसे कैसे बनाकर रखें, ये हम जान पा रहे हैं। बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बेरोजगारी केवल पैसों की नहीं मन की भी समस्या है, इसी के साथ हम जान पाए कि उम्मीद क्यों जरूरी है। यही हम जान रहे थे कि बेरोजगारी में उम्मीद बनाए रखने के क्या तरीके हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहला तरीका हमने जाना कि खुद को दूसरों से तुलना करना हमें बंद करना है। दूसरी बात हमने जानी कि खाली हमें नहीं बैठना है, हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहने की जरूरत है। इसी के साथ छोटे काम को छोटा मत समझिए। अक्सर हम देखते हैं ना दोस्तों कि कई युवा केवल बड़ी नौकरी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब तक बड़ा अवसर मिले तब तक छोटे काम भी अनुभव देते हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, दुकान संभालना, ऑनलाइन काम करना, खेती में नई शुरुआत, घर से छोटा व्यवसाय, हस्तकला, डेयरी, फूड स्टॉल। कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम की एक अलग ही पहचान होती है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटे काम अक्सर बड़े सपनों की नींव बनते हैं। इसलिए दोस्तों, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा जरूरत मानसिक मजबूती की होती है। कुछ लोग ताने मारेंगे, कहेंगे कि अभी तक नौकरी नहीं मिली, इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, फलाने का लड़का तो देखो बहुत आगे निकल गया है। लेकिन दोस्तों, दूसरों की बातें सुनकर हमें खुद को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि दुनिया की आवाज से ज्यादा जरूरी है अपने मन की आवाज को सुनना। और जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमें अपने मन को टूटने नहीं देना है। हालांकि एक बात ये भी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहां गलतियां हो रही है वो पहचान हम जरूर करें, ताकि हम समझ पाए कि कहां गलती हुई है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। कहना चाहूंगी दोस्तों कि जिस माहौल में केवल निराशा हो वहां उम्मीद टिक नहीं पाती, इसलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें प्रेरित करे, आगे बढ़ने की बात करे, नई सोच दे और हमारी हिम्मत बढ़ाए। अच्छी किताबें हमें पढ़नी होंगी, प्रेरणादायक कार्यक्रम हमें सुनने होंगे और सफल लोगों की कहानियां जाननी है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं और जहां उम्मीद नहीं होती है वहां भी उम्मीद की नई किरण जगने लगती है। यही एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मैं ये बात आपको समझाना चाहूंगी कि एक छोटे से गाँव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ने पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं मिली। पहला जो दोस्त था वो रोज दुखी रहता, लोगों से छिपता और धीरे धीरे निराश हो गया। दूसरे दोस्त ने सोचा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं कुछ नया सीखता हूँ। उसने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, धीरे धीरे गांव में उसका नाम चल पड़ा। कुछ साल बाद उसने अपनी दुकान खोल ली। एक दिन पहला दोस्त बोला, तुझे डर नहीं लगा था? दूसरा मुस्कुराकर बोला, डर तो था लेकिन मैंने डर से बड़ा अपना हौसला रखा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कई बार जिंदगी नौकरी से नहीं सोच बदलने से बदलती है। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि हमने बहुत ज्यादा बड़ी पढ़ाई कर रखी है, हमें बड़ी जॉब मिलनी चाहिए, हो सकता है कि वो चीज हमारे किस्मत में ही ना हो। अगर वो होगी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें खाली नहीं बैठना है, हमें कुछ नया अलग करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी हम अपने मन को टूटने न दें, हमारे मन की जो उम्मीद है वो कहीं टूटे ना। और बहुत से लोगों से बहुत सी बार हमें बहुत सी चीजें सुनने मिलती है, वो भी हमें सुनने को ना मिले। इसलिए दोस्तों, बेरोजगार व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत सहारे की होती है, ताने की नहीं। इसलिए परिवार को चाहिए कि वो उसका हौसला बढ़ाए, तुलना न करें, धैर्य रखें और मानसिक सहयोग दें, क्योंकि एक अच्छा शब्द किसी टूटे इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। साथियों, अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भविष्य खत्म हो गया है। याद रखिए कि हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष देखा है, हर जीत से पहले मुश्किलें तो आती ही हैं और हर अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। इसलिए धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत होता है। इसलिए दोस्तों, बेरोजगारी एक कठिन दौर जरूर होता है, लेकिन यह जिंदगी का आखिरी सच नहीं है। यह समय हमें धैर्य, मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास सिखाता है। जरूरी यह नहीं है श्रोता साथियों कि आज आपके पास क्या नहीं है, जरूरी यह है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा कितनी है। अगर मन में उम्मीद जिंदा है

आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बिजली की कटौती की बढ़ती समस्या और आम जनजीवन पर पड़ता उसका प्रभाव। हम देखते हैं कि बिजली आज केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: घरों की रोशनी से लेकर बच्चों की पढ़ाई, खेती, उद्योग, अस्पताल, संचार व्यवस्था, हर क्षेत्र में बिजली पर हम निर्भर है। ऐसे में जब बार बार बिजली कटौती होती है तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर हमें दिखाई देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाकर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बिजली की कटौती और आम जनजीवन पर उसके प्रभाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बिजली आधुनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक बन चुकी है। आज के समय में घर, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, कृषि, व्यापार, संचार जैसी लगभग गतिविधियों में बिजली है वो महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: बिजली ने मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और तेज बनाया है। लेकिन जब बिजली की आपूर्ति बाधित होती है अंजलि जी, तब लंबे समय तक बिजली की कटौती होती है।
1: जी जी,
0: साथ ही हम देखते हैं कि इसका प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की कमी अनेक समस्याओं को जन्म देती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि एक समय था जब बिजली को केवल एक सुविधा माना जाता था, लेकिन आज बिजली हमारे जीवन की आवश्यकता बन चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में बिजली पर निर्भर रहते हैं। घर की रोशनी, पंखे, कूलर, फ्रिज, मोबाइल चार्जिंग, बच्चों की पढ़ाई, खेती, व्यापार, अस्पताल, बैंक, इंटरनेट और उद्योग, सब कुछ बिजली से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब बार बार बिजली कटौती होती है श्रोता साथियों, या लंबे समय तक बिजली नहीं आती, तो इसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज का जीवन बिजली के बिना लगभग अधूरा है। बिजली केवल उपकरण चलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि विकास का आधार है। जिस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अच्छी होती है मनीषा, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के अवसर भी बेहतर होते हैं। बिजली ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। खेतों में सिंचाई से लेकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तक, हर क्षेत्र बिजली पर निर्भर है। इसलिए जब बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, तो इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बिजली केवल रोशनी का साधन नहीं है, बल्कि यह विकास और प्रगति का आधार भी है।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक तकनीकी, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और उत्पादन के अधिकांश साधन जो है वो बिजली पर आधारित है। इसलिए जब बिजली कटती है, तो केवल अंधेरा ही नहीं होता, बल्कि जीवन के अनेक गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि बिजली की कटौती सबसे अधिक प्रभाव घरों में दिखाई देता है। घरों के पंखे, कूलर, एयर कंडीशन, फ्रिज, पानी की मोटर और टेलीविजन और अन्य उपकरण है वो बिजली से ही चलते हैं। बिजली न होने पर गर्मी के दिनों में लोग अत्यधिक परेशानी का सामना करते हैं साथियों। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति जो होते हैं, वो भी विशेष रूप से इनसे प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में बिजली कटने से घरों के अंदर उमस है वो भी बढ़ जाती है। लोगों की नींद प्रभावित होती है और वे शारीरिक थकान महसूस करते हैं। फ्रिज बंद होने से खाद्य पदार्थ हैं वो भी श्रोता साथियों खराब हो जाते हैं। दूध, फल तथा अन्य जो हमारे पास सामग्री होती है वो भी खराब होने लगती है। पानी की कमी, अंजलि बोन, पानी की वजह से हम देखते हैं कि मोटर है वो भी बिजली से संचालित होती है। बिजली न होने पर पानी की आपूर्ति है वो भी प्रभावित होने लगती है, जिससे घरेलू कार्यों में कठिनाइयां आती है। और कई बार हम देखते हैं कि पीने योग्य पानी के लिए भी हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर अधिक चलने लगते हैं। कई बार बिजली उत्पादन और मांग के बीच संतुलन नहीं बन पाता, जिससे कटौती करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक दिखाई देती है। कई गांवों में अभी भी पर्याप्त बिजली नहीं पहुंच पाती, या फिर बिजली आने जाने की समस्या बनी रहती है। बिजली कटौती के मुख्य कारण अगर उन पर बात करें, तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती बिजली की मांग, पुराने बिजली के तार और जर्जर ढांचा, ट्रांसफार्मर पर अधिक भार, बिजली चोरी, तकनीकी खराबियां, प्राकृतिक आपदाएं, रखरखाव की कमी और ऊर्जा संसाधनों की सीमाएं, इन सभी के कारण हम देखते हैं कि बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: इसका प्रभाव हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। हम देखते हैं कि आज शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है। बच्चे किताबों के साथ साथ मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग भी करते हैं। जब बिजली नहीं रहती है, तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित होती हैं, परीक्षा की तैयारी में बाधा आती है, कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा रुक जाती है। गांव में कई बच्चे रात के समय पढ़ाई करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बिजली कटौती उनके भविष्य को प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि कृषि के क्षेत्र में इसका प्रभाव कैसे दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि भारत की बड़ी आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिजली का प्रभाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। घरेलू कार्यों की सबसे अधिक जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं पर होती है। बिजली न होने पर महिलाओं की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। पानी की मोटर नहीं चल पाती, भोजन बनाने में कठिनाइयां होती है, गर्मी में छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल मुश्किल हो जाती है, घर के कामों में अधिक समय लगता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में बिजली कटौती महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि भारत की बड़ी आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। खेती में सिंचाई के लिए बिजली है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं किसान हम देखते हैं कि बिजली से चलने वाले पंपों के माध्यम से ही खेती में पानी को सिंचाई करते हैं। बिजली कटौती होने पर सिंचाई का कार्य है वो भी बाधित हो जाता है। समय पर पानी न मिलने से उनकी फसल की वृद्धि है वो भी रुक जाती है, उत्पादन में भी कमी आती है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में यह समस्या हमें अधिक दिखाई देने लगती है। कृषि आधारित उद्योग और डेयरी व्यवसाय जो हैं उनमें भी बिजली की कटौती के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे किसानों की आय प्रभावित होती है और आर्थिक नुकसान भी उन्हें झेलने पड़ते हैं।

0: मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से बिजली कटौती की जो समस्या है वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता। साथियों, बिजली कटौती का असर छोटे व्यापारियों पर भी पड़ता है। सिलाई मशीनें बंद हो जाती है, वेल्डिंग काम रुक जाता है, साइबर कैफे और कंप्यूटर सेंटर प्रभावित होते हैं, दूध दवा और खाद्य सामग्री खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि छोटे व्यापारियों की आय पर सीधा इसका असर पड़ता है और कई बार उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य क्षेत्र में बिजली का महत्व बहुत ज्यादा अधिक है। अस्पतालों में कई मशीनें बिजली से चलती हैं। बिजली कटौती होने पर मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जांच उपकरण प्रभावित हो जाते हैं, दवाइयों के भंडार में समस्या आ सकती है, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का काम प्रभावित हो सकता है। हालांकि मनीषा, अधिकांश बड़े अस्पतालों में जनरेटर होते हैं, लेकिन छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा हमेशा उपलब्ध नहीं होती। और हम देख रहे हैं कि बढ़ती गर्मी और बिजली संकट की जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जब बिजली चली जाती है तो लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की परेशानियां बढ़ जाती है। बच्चों को नींद और आराम नहीं मिल पाता, काम करने की क्षमता कम हो जाती है और गर्मी और बिजली कटौती का यह दोहरा प्रभाव लोगों के जीवन को और अधिक कठिन बना देता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बिजली किसी भी व्यापार और उद्योग की रीढ़ मानी जाती है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योग तक सभी कार्यों में बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली कटने पर उत्पादन कार्य है वो भी रुक जाते हैं, मशीनें बंद हो जाती हैं और काम की गति है वो धीमी पड़ जाती है। इससे हम देखते हैं कि उत्पादन की लागत है वो भी बढ़ती है, समय पर वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही हम देखते हैं कि छोटे व्यवसाय जैसे कि साइबर फेक, प्रिंटिंग, मोबाइल और दुकानों जैसी जो होती है वहाँ भी ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लगातार बिजली कटौती निवेश और आर्थिक गति को भी प्रभावित करती है। उद्योगों में जनरेटर चलने के अतिरिक्त खर्च करना ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, इससे उत्पादन भी महंगा हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि बार बार बिजली जाने से लोगों में चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है। जब आवश्यक कार्य बार बार रुकते हैं तो लोगों में निराशा पैदा होती है। कई बार सामाजिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। रात के समय अंधेरा होने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं, विशेषकर महिला और बुजुर्गों के लिए। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि बिजली बचत की हमें आदत डालनी होगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बिजली का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बिजली की मांग बढ़ने से इसकी कटौती की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हम मनुष्य को मिलकर ही इसके समाधान खोजने की जरूरत है। इसके लिए हमें बिजली बचत की आदत को अपनाना है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण सबसे बड़ा समाधान है। खाली कमरे की लाइटें हमें बंद रखनी है, जरूरत न होने पर उपकरण हमें बंद करने हैं, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का हमें प्रयोग करना है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ LED और ऊर्जा दक्ष उपकरण का हम प्रयोग करते हैं तो इससे बिजली खर्च कम होती है और अधिक रोशनी भी होती है, जिससे बिजली की मांग जो है वो कम हो जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कटौती है वो सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन न होने के कारण बिजली की कटौती है वो बढ़ती जाती है। बिजली न होने से पंखे, कूलर वो है जो सब बंद हो जाते हैं, लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए स्थिति विशेष रूप से कठिन होती है। गर्मी के कारण लोगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, इसलिए हमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारत में सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, स्कूलों और पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सकता है, किसानों के लिए सोलर पंप उपयोगी साबित हो सकते हैं। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को मनीषा कि बिजली चोरी केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि समाज के प्रति अन्याय भी है। इससे पूरे सिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और कटौती पड़ती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सरकार और बिजली विभाग को चाहिए कि पुराने तार बदले जाएं, ट्रांसफार्मर की क्षमताएं बढ़ाई जाएं, नियमित रखरखाव किए जाएं और तकनीकी नुकसान को कम किया जाए।
1: बिल्कुल।
0: जब नागरिक, पंचायत और विभाग मिलकर काम करते हैं तो समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से होता है।
1: बिल्कुल।
0: बिजली की कटौती केवल कुछ घंटों का अंधेरा नहीं है श्रोता साथियों, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, व्यापार और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन यह भी सच है मनीषा कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर भी आती है। यदि हम बिजली को केवल उपयोग की वस्तु न मानकर एक अमूल्य संसाधन समझें, ऊर्जा का संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, बिजली चोरी का विरोध करें और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि विकास केवल अधिक बिजली पैदा करने से नहीं होगा, बल्कि उपलब्ध बिजली का समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने से भी होगा।
1: बिल्कुल।
0: आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जा सुरक्षित भविष्य देने के लिए हमें आज ही जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। शिकायतों की बजाय समाधान की सोच विकसित करें, क्योंकि जब समाधान जागरूक होता है तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, उजाले का रास्ता अवश्य निकल जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बिजली कटौती केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और सामुदायिक जो गतिविधियां हैं वो भी बिजली पर निर्भर करती हैं। बिजली न होने पर इन कार्यक्रमों का संचालन है वो कठिन हो जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है, क्योंकि सड़कों पर लाइटें हैं वो बंद हो जाती हैं। रात्रि के समय हम देखते हैं कि अंधेरा होने से दुर्घटना और अपराध की आकांक्षाएं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए बिजली की नियमित उपलब्धता सामाजिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल मनीषा,
1: यही अगर हम बात करें कि पर्यावरण दृष्टिकोण से इसको देखें तो हम देखते हैं कि बिजली कटौती के दौरान लोग अक्सर डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। इससे हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ते हैं। जनरेटर से निकलने वाला धुआं पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक होता है। श्रोता साथियों, यदि बिजली की आपूर्ति विश्वसनीय और नियमित हो तो प्रदूषण में होने वाला वैकल्पिक साधनों से जो धुआं होता है उसे भी हम कम कर सकते हैं। इसलिए साथियों, बेहतर विद्युत व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रही थी बिजली कटौती और आम जनजीवन पर इसके प्रभाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि बिजली आधुनिक सभ्यता की धड़कन है। यह केवल एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आधारशिला बन चुकी है।
1: बिल्कुल
0: घरों में प्रकाश से लेकर औद्योगिक उत्पादन तक, खेतों की सिंचाई से लेकर अस्पतालों की जन रक्षक सेवा तक, हर गतिविधि में किसी न किसी रूप में बिजली पर निर्भर रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में जब बिजली की आपूर्ति बाधित होती है तो इसका प्रभाव केवल उपकरण बंद होने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जीवन को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल
0: आज जब दुनिया में डिजिटल और तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं साथियों, तब बिजली की कटौती एक बड़ी चुनौती हमारे लिए बन चुकी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं कितनी सुचारू रूप से उपलब्ध हैं।
0: जी हाँ।
1: बिजली ऐसी एक आधारभूत सुविधा है जो आज विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए बिजली कटौती को केवल तकनीकी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
0: जी हाँ।
1: ये एक ऐसा मुद्दा है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन से लेकर पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस विषय पर एक दूसरा पहलू यह भी है श्रोता साथियों, कि हर बार जब हम बिजली जाने पर असुविधा महसूस करते हैं तब यह सोचने की भी जरूरत है कि ऊर्जा संसाधन सीमित है और इनकी जिम्मेदारी केवल सरकार या बिजली विभाग की नहीं है। हम सभी की छोटी छोटी आदतें ऊर्जा व्यवस्था को बेहतर या खराब बनाने में योगदान देती है।
0: हाँ।
1: जब हम आवश्यकता से अधिक बिजली खर्च करते हैं, उपकरणों पर लापरवाही से उपयोग करते हैं, ऊर्जा संरक्षण के महत्व को नहीं समझते, तब समस्या कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल। कह
1: सकते हैं मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि आने वाला समय ऊर्जा के समझदारी पूर्ण उपयोग का समय है। दुनिया तेजी से सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष तकनीकों और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रही है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हमें भी केवल उपभोक्ता बनकर नहीं रहना है बल्कि ऊर्जा संरक्षण के सहभागी बनना है। गाँव और शहरों में यदि लोग मिलकर ऊर्जा बचत को जन आंदोलन का रूप दे तो बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बिजली कटौती का महत्वपूर्ण प्रभाव समय प्रबंधन पर भी पड़ता है। वर्तमान समय में लोग अपने कार्यों को निश्चित समय के अनुसार पूरा करने की योजना बनाते हैं। जब बिजली चली जाती है तो कई कार्य ही वो अधूरे रह जाते हैं। कार्यक्रमों में काम करने की गति धीमी हो जाती है, घरों में आवश्यकताएं कार्य होते हैं उनमें देरी हो जाती है, विद्यार्थी की पढ़ाई है वो भी निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो पाती है।
1: बिल्कुल।
0: इससे लोगों के समय का नुकसान होता है और कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। साथ ही हम देखते हैं कि घरेलू जीवन में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। आज अधिकांश घरों में रसोई और अन्य घरेलू कार्यों में बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मिक्सर, पानी की मोटर, सिलाई मशीन, अन्य साधनों का काम है वो बिजली के जरिए ही किया जाता है। अगर बिजली नहीं होती है तो घर की महिलाओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: बिजली कटौती के कारण महिलाओं का काम भार है वो बढ़ जाता है। उन्हें कई काम पारंपरिक तरीकों से करने पड़ते हैं जिससे अधिक समय और श्रम लगता है। श्रोता साथियों, गर्मी के दिनों में अंजलि जी हम देखते हैं कि रसोई में बिना पंखे के काम करना भी हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम कठिनाइयों के बीच सकारात्मक सोच बनाए रखें। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि उजाले का एक दीपक जलाया जाए। बिजली की समस्या का स्थायी समाधान केवल नई लाइनें बिछाने या नए ट्रांसफार्मर लगाने से नहीं होगा बल्कि जागरूक नागरिकों की जिम्मेदार प्रशासन और सामुदायिक सहयोग के मजबूत संबंध से होगा।
0: जी हाँ।
1: हम सभी को यह संकल्प लेना है कि ऊर्जा की प्रत्येक इकाई का सम्मान करेंगे, बिजली बचाने को अपनी आदत बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा समाज तैयार करेंगे जहाँ विकास की रोशनी हर घर, हर खेत, हर विद्यालय और हर सपने तक समान रूप से पहुँच सके।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि सच्चा उजाला केवल तारों से नहीं बल्कि जागरूकता, जिम्मेदारी और सामुदायिक प्रयासों से आता है। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि बिजली केवल बल्ब जलाने का साधन नहीं है बल्कि यह आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुकी है।
0: जी हाँ।
1: जब यह धड़कन धीमी पड़ती है तो इसका असर केवल मशीनों पर नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों, योजनाओं और सपनों पर दिखाई देता है। एक छात्र की पढ़ाई, एक किसान की फसल, एक दुकानदार की कमाई, एक महिला का घरेलू प्रबंधन और एक मरीज की देखभाल, ये सभी कहीं ना कहीं बिजली की उपलब्धता से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर भी हर चुनौती हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती होती है। बिजली की समस्या हमें यह सोचने का अवसर देती है कि विकास केवल संसाधनों के उपयोग अधिक उपयोग से नहीं बल्कि उनके विवेकपूर्ण उपयोग से संभव है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम अपने जीवन में ऊर्जा के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित कर लें तो न केवल मनीषा हम बिजली की बर्बादी कम करेंगे बल्कि आने वाली वर्षों में ऊर्जा संकट की आशंकाओं को भी घटा देंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि छोटे बच्चों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। बिजली कटौती छोटे बच्चों के जीवन को भी प्रभावित करती है। साथियों, गर्मी में बच्चे हैं वो पर्याप्त आराम नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण उन्हें बेचैनी होने लगती है। उनकी दिनचर्या है वो भी अंजलि जी प्रभावित होती है। हम देखते हैं कि आज बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन के अनेक साधन है जो बिजली पर आधारित है। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, शैक्षणिक वीडियो, डिजिटल उपकरण बिजली के अभाव में उपयोग नहीं किए जा सकते। इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। साथ ही हम देखते हैं कि बुजुर्गों के लिए बिजली कटौती कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। बढ़ती उम्र में शरीर की गर्मी और उमस सहन करना उनके लिए मुश्किल होता है। बिजली न होने पर उन्हें असुविधा, थकान और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार नियमित रूप से स्वास्थ्य उपकरणों का उपयोग भी करते हैं। कुछ लोग ऑक्सीजन या अन्य विद्युत उपकरणों पर निर्भर होते हैं। ऐसे समय में हम देखते हैं कि बिजली कटौती उनके लिए चिंता का विषय बन जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सुविधाओं के उपभोक्ता से आगे बढ़कर संसाधनों के संरक्षक बने। जिस प्रकार हम पानी की एक एक बूंद बचाने की बात करते हैं, उसी प्रकार बिजली की एक एक इकाई का महत्व भी समझना होगा। ऊर्जा संरक्षण कोई मजबूरी नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक सशक्त माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही समाज में सहयोग सहभागिता की भावना को भी मजबूत करना होगा। जब नागरिक जागरूक होंगे, स्थानीय संस्थाएं सक्रिय होंगी, प्रशासन संवेदनशील होगा, तब समस्याएं केवल शिकायतों का विषय नहीं रहेगी बल्कि समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर बनेंगी। किसी भी क्षेत्र का विकास तभी स्थायी बनता है जब उसमें जनता की भागीदारी शामिल होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बिजली कटौती और आम जनजीवन पर इसके प्रभाव को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: सूरजपुर, नाम तो सूरजपुर था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव के लोगों का जीवन अंधेरे में डूबता जा रहा था। कारण था श्रोता साथियों लगातार बढ़ती बिजली की कटौती। गर्मियों में तो हाल और भी बुरा हो जाता था, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, तो कभी पूरी रात बिजली गायब रहती। गांव के लोग परेशान थे, चौपाल पर बैठकर रोज बिजली विभाग को कोसना उनकी आदत बन गई थी। हर कोई समस्या की बात करता लेकिन समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाता। गाँव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था, उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। वह मेहनती और समझदार व्यक्ति था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा गोपाल गांव में खेती संभालता था। एक दिन रामलाल अपने खेत में खड़ा था, उसे देखा कि उसकी मक्का की फसल पानी की कमी से मुरझाने लगी है।
1: जी हाँ,
0: ट्यूबवेल बिजली न होने के कारण कई दिनों से ठीक नहीं चल पा रही थी। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही हाल रहा तो इस बार फसल बहुत नुकसान होगा। पास खड़ा गोपाल बोला, बाबा हम क्या कर सकते हैं, बिजली ही नहीं आती। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा हर बात के लिए किस्मत और सरकार को दोष देना आसान है, लेकिन कभी कभी हमें खुद भी रास्ता खोजना पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: गोपाल को पिता की बात समझ नहीं आई। उधर गांव के स्कूल में पढ़ने वाली सीमा भी परेशान थी। वह 10वीं कक्षा थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का।
1: जी हाँ,
0: उस रात सीमा परीक्षा की तैयारी कर रही थी और अचानक बिजली चली गई।
1: जी,
0: गर्मी बहुत थी, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना मुश्किल हो रहा था। सीमा की माँ ने कहा, बेटे थोड़ी देर आराम कर ले। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, माँ परीक्षा सिर पर है, मैं कैसे पढ़ूं। उसकी बात सुनकर माँ भी निराश हो गई।
1: जी हाँ,
0: गांव में केवल किसान और विद्यार्थी ही नहीं बल्कि दुकानदार भी परेशान थे। शंकरलाल की एक छोटी किराने की दुकान थी, उसने ठंडे पेय और कुछ दूध से बने उत्पाद रखने शुरू कर दिए थे, लेकिन बार बार बिजली जाने से समस्या जो है वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि सामान खराब होने लगे।
1: जी हाँ,
0: एक दिन उसने दुकान का हिसाब लगाया तो पता चला कि केवल 1 महीने में 1000 रुपए का नुकसान हो गया। अब गाँव में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से बिजली कटौती का शिकार था। एक शाम पंचायत भवन में बैठक बुलाई गई। गांव के सरपंच कमला देवी ने कहा कि आज हम केवल शिकायत नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि समाधान क्या हो सकता है। पहले तो लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, समाधान हमारे हाथ में थोड़ी है। लेकिन कमला देवी ने गंभीर स्वर में कहा, हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान जरूर होता है।
1: जी हाँ,
0: उसी समय गांव के स्कूल के शिक्षक महेश जी खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं पिछले कई महीनों से एक बात देख रहा हूँ, गांव में जितनी बिजली आती है उसका भी सही उपयोग नहीं हो रहा। कई घरों में दिन भर लाइट जलती रहती है, कुछ लोग अवैध कनेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महेश जी आगे बोले, यदि हम पहले इतनी गलतियां सुधार लें तो शायद स्थिति बेहतर होगी।
1: बिल्कुल,
0: बैठक में पहली बार लोगों ने समस्या को दूसरे नजरिए से देखा। अगले दिन गांव के युवकों ने एक अभियान शुरू किया। अभियान का नाम था ऊर्जा बचाओ गांव बचाओ।
1: बिल्कुल,
0: इस तरीके से उस गांव में बदलाव आया। धीरे धीरे बदलाव की रोशनी के चलते हम देखते हैं कि उस गांव में बिजली की जो समस्या थी वो दूर हो गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था लेकिन सूरजपुर के लोग थे वहाँ एक नया सूरज उग चुका था।
1: जी हाँ,
0: आत्मविश्वास, सहयोग और समाधान का। श्रोता साथी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्याएं हर समाज में आती है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन जो समाज मिलकर समाधान खोजने की आदत बना ले उसके जीवन में अंधेरे कभी स्थायी नहीं रह सकते।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रकृति उसकी ऊर्जा उपलब्धता से जुड़ी होती है। यदि बिजली की आपूर्ति पर्याप्त विश्वसनीय हो, उद्योग हो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तेजी से विकास करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बिजली की कमी विकास परियोजनाओं की गति को धीमा कर देती है। निवेशक भी उन क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां ऊर्जा आपूर्ति स्थिर हो। श्रोता साथियों, इसलिए बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाना राष्ट्र के विकास की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि बिजली कटौती की समस्या कम करने के लिए हमें ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यदि प्रत्येक नागरिक बिजली में अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से दी तो हम देखते हैं कि अनावश्यक जो खपत है वो भी कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें साथियों, उपयोग न होने पर उपकरणों को बंद कर दें, ऊर्जा दक्ष उपकरणों को अपनाएं और बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए ऐसे उपाय आपको अपनाने चाहिए जो सामूहिक रूप से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और जैव नवीकरण स्रोत बिजली संकट के संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

0: सकते हैं। भारत जैसे देश में अंजलि जी हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये व्यापक संभावनाएं बन सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि गांव, विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर बिजली पर निर्भर और संतुलन लाया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा की भी सुरक्षा हो सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, उजाला केवल बिजली से नहीं आता, उजाला तब आता है जब समाज जागरूक होता है, जब लोग अपने कर्तव्य को समझते हैं और जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए बिजली कटौती की समस्या पर केवल असंतोष व्यक्त करने के बजाय हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जो भविष्य को अधिक सुरक्षित, अधिक सक्षम और अधिक ऊर्जा संपन्न बना सके।
0: बिल्कुल,
1: हम सब मिलकर ऐसी सोच विकसित करें श्रोता साथियों जिसमें संसाधन का सम्मान हो, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था छोड़ने का संकल्प हो।
0: जी हाँ,
1: किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके संसाधनों में नहीं बल्कि उन संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने में होती है जो वहाँ के नागरिकों में होता है। जब जागरूकता बढ़ती है तो समस्याएं छोटी पड़ जाती हैं।
0: जी हाँ,
1: और जब समाज खड़ा होता है तो अंधेरे से उजाले की दूरी भी बहुत कम रह जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी के समय में जो बिजली की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही हैं। अगर हम सही तरीके से बिजली की खपत करेंगे तो हम देखेंगे कि बिजली कटौती की जो समस्या बढ़ रही है उसे कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा और अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा।
0: जी हाँ,
1: तभी हम इस बदलाव को ला सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश को हम रोज लेकर हाजिर होते हैं प्रातः 11 से 1 बजे के बीच में। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप अपने फरमाइश गीतों को देने के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए श्रोता साथियों, हमारा नंबर है 9460051234। इस नंबर के जरिए आप अपने फरमाइश गीतों को वागर रेडियो 90.8 FM के माध्यम से सुन सकते हैं और आप अपने फरमाइश गीतों को इस नंबर पर दे सकते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बज चुकी है, फरमाइशों का आना शुरू हो चुका है। तो कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल है चूड़ी मजा ना देगी। फिल्म का नाम है सनम बेवफा। आवाज दी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने। सुना चाह रहे इस गीत को गंज डुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनीद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर। पसंद किया है दोस्तों इस गीत को पथरूर से विजय अंबाडकर, सुनीता, अक्षय, राधिका और ऋषिकेश अंबाडकर। कोड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी, हिमाक्ष। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल थे चूड़ी मजाना देगी, फिल्म का नाम था सनम बेवफा। आवाज दी थी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है चांदनी, गीत की बोल है लगी आज सावन की। सुना जा रहे इस गीत को सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घुड़के, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से हैं ये। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। सुना जा रहे इस गीत को जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज जी भट्ट। फरमाइश करता है सोंगा मगर रोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवी करानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हयांश कुमार चंदन इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, रसायल भारती बघेल, ये है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। अनुरोध किया है इस गीत को नेहरू चौक पाठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। गीत के बोल है लगी आज सावन की, फिल्म का नाम है चांदनी।

साथियों, अभी हमने गीत सुना, लगी आज सावन की वो फिर छड़ी है। फिल्म का नाम था चांदनी। इसी तरह फरमाइश अगली आई है हमारे पास, गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली मैं। फिल्म का नाम है खलनायक। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिका अली खान। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, यह पद्मा टोकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से। अनुरोध किया है इस गीत को गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व कमरजीत कौर। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों गाजियाबाद से शिशपाल अकेला, सालार पहलगांव से हैं मिर्जाउद्दीन। इसी गीत से जुड़ रहे हैं लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। फरमाइश करता है इस गीत के मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मौगर मौरत जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से ही अमित जंगेल, शकुनी जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत की बोल है पालकी में होकर सवार चली में। फिल्म का नाम है खलनायक। आवाज दी इस गीत को अलका याग्निक जी ने। तो आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत की बोल है, करवटे बदलते रहे सारी रात। फिल्म का नाम है आपकी कसम। सुना जा रहे इस गीत को कोजागिरी कॉलोनी कॉपर गांव से सुरेश मालूत, वर्षा मालूत, श्रद्धा मालूत, मानसी मालूत इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीणा मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचित खुराना। अनुरोध किया है दोस्तों इस गीत को जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, ये है गांव लहोडडा जिला बागपत से। करावल नगर दिल्ली से है रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं यह गीत। गीत के बोल हैं करवटे बदलते रहे, फिल्म का नाम है आपकी कसम।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है हमारे पास, गीत की बोल है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, फिल्म का नाम है आशिकी। इस गीत को सुनना चाह रहे हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़ के, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं। अनुरोध किया है इस गीत को नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, ये हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत कुरकृत, गुरशब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से हैं। और भी दोस्त हैं श्रोता साथियों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा, पूजा परिहार, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्मी, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंह, ये हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत, गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, फिल्म का नाम है आशिकी। तो आप बने रहें कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास है, ये फिल्म का नाम है विदाई। बोल है, मैंने तुम संग प्यार किया, मैं कैसी दीवानी। आवाज़ दी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने। सुनना चाह रहे इस गीत को ग्राम महसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाची धाड़े, स्वप्निल धाड़े। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, हरिपाव बिड़वे, मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बीवी चाहत सादिया, दादा बाबू रोड गिरीटी झारखंड से हैं। फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है। अगली फरमाइश है, सुना जा रहे हैं इस गीत को डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीतारानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, आरजू जाजूरिया और गुड्डू। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमला पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चासिया पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। दादरी गीत भिवानी से हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है मैंने तुम संग और फिल्म का नाम है विदाई। आवाज़ दी इस गीत को लता मंगेशकर जी ने।

अगली फरमाइश है ये श्रोता साथियों, गीत के बोल हैं दिल ने ये कहा है दिल से, फिल्म है धड़कन, सुना जा रहे इस गीत को माया देवी, रितिका, आदित्य कसाना, लदावली, जिला मुरादाबाद से हैं ये। इसी गीत से जुड़ रहे हैं ग्राम लसोड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन को सुमन कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी अनुरोध करता है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर अक्सर हरिद्वार से हैं ये। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान ताइडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्ची, आशीष मुरहेकर, गांव कुमार हिड़ा सरहानपुर से हैं सैयद मसरूर, शहन हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीप। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल है दिल ने ये कहा है दिल से, फिल्म का नाम है धड़कन, आवाज़ दी इस गीत को अलका याग्निक जी ने।

साथियों अगली फरमाइश हमारे पास आई, ये फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया, गीत के बोल हैं जिंदगी की यही रीत है। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार साहब ने। सुनना चाह रहे इस गीत को जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघी, महेश संघी, प्रकेश संघी, प्रीतेश संघी और पूरा संघी परिवार इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं। अनुरोध करता है इस गीत के शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े, छकुली ताई खोबरखेड़े, खांडवी बुल्ढाना से हैं दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिलोरी अमरावती से हैं सुनेना तनुजा, तनुज भोंडे, तनुज पवन भोंडे और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से हैं उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। ग्राम नागरकोरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्य साहू। तो श्रोता साथियों आइए सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं जिंदगी की यही रीत है। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया, आवाज दी है किशोर कुमार साहब ने।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। श्रोता साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है जनता की अदालत। गीत के बोल ही दिल की हालत। इस गीत को आवाज दी है सोनू कुमार और कविता कृष्णामूर्ति जी ने। इस गीत को सुनना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इज़दार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनोद कुमार वर्मा और सोनम जी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थन दादा पाटिल, भगवान जेठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी जी पाटिल, कुमारी सानिका जी पाटिल। नादुरा गांव से जुड़ना चाह रहे हैं शिव कुमार उगले और राहुल जी उगले। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही दिल की हालत। इस गीत को आवाज दी है सोनू कुमार जी ने और कविता कृष्णामूर्ति जी ने। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

0: आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बाबा कुटरे रायगढ़ से। फिल्म का नाम है मेरा नाम है जोकर, गीत की बोल ही जीना यहाँ मरना यहाँ। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। इस गीत को सुनना चाह रही हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफरेबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना जी देशमुख। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आजाद। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जीना यहाँ मरना यहाँ। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूट कूद करेगा तो।
2: शेर सिंह, राजू आ यहीं

0: आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुके हैं अवारपुर सी। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, गीत के बोल हैं ये मौसम का जादू है मितवा। इस गीत की फरमाइश करता है शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन शेख, फैजाज शेख, फारूक शेख, वसीम जी शेख, अफसाना जी शेख, अश्मीरा जी, फरहान शेख, जनीत शेख, फरहान जी शेख, अब्दुल लोहीवाला, शाहिदा जी शेख और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष आजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाज शहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वानी जी थांदी। इस गीत के अनुरोध करता है दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नदुरा से संतोष वंसानी, उषा वंसानी, ऋषिकेश, अनिकेत जी, सागर कटक जी। नासिक से जुड़ना चाह रहे हैं विशाल नवली, सोनाली नवली, समर्पण नवली और भक्ति जी नवली। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मौसम का जादू है मितवा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: टेन नाइन एट सेवन

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है यार मेरा। गीत के बोल हैं दिल की किताब कोरी है। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुरी मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरी प्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भवानी नगर पेठन से अरुण घोड़के, आरती जी घोड़के, भाऊ साहेब गंगा सागर, हर्षवर्धन और अशोक, राशि और कार्तिक और परी जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं डापकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाखूत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल की किताब कोरी है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली। गीत के बोल ही ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही है मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित राज, मोनू मानस जी राज। भागवत से जुड़ना चाह रही है अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन जी पाटिल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलराम गेट कासगंज सी, एस असलम सेफी, जुबनेशा बेगम, अक्रम सेफी, सदाम सेफी, सोनी सेफी, जाबित अली और आबाद खान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर सी मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अभानजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जरा पर्दा हटा दो मुखड़ा दिखा दो। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, यह पर्दा हटा दो, मुखड़ा दिखा दो। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलेवाला सी। फिल्म का नाम है रंग। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी और कुमार सोनू जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। चिलवाड़ा अकोला सी अमोल इगली, अर्चना इगली, सर्वेज इगली, अधीरा इगली, राजवी और इगली परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मलियाना सरधाना मेरठ सी, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वी एम जी जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा सी, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाली खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत की अनुरोध करता है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। फिल्म का नाम है रंग और इस गीत को आवाज दी है अलका जी और कुमार सोनू जी ने। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है नागिन, गीत की बोल है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ असर। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने और मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है जोन डेकिस्ट्रो, रोजे डेकिस्ट्रो, पल डेकिस्ट्रो, विलेज डेकिस्ट्रो। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश जी कड़वासरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश जी मुणत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इस गीत के अनुरोध करता है पटियाकला दुर्ग से संजीव शाहू, सुजिता शाहू, शशंक शाहू, सीमाजी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरासिया, सरिता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दियाजी चौरासिया। यूपी से जुड़ रही हैं सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी चौरासिया, योगेंद्र नायक कासगस जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये कैसा असर। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर सी। फिल्म का नाम है बेताब, गीत के बोल हैं जब हम जवां होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता जी और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ जी गोड़ानी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। गंजडू द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव जी, एकता कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं। सीताराम कंगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। मॉडल ट्यून कर्नल सी, सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इष्टेश शर्मा, सुहानी शर्मा, किरण ठाकुर जी और लग्गी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब हम जवां होंगे।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मेरा साया, गीत की बोल है तू जहां जहां चलेगा मेरा साथ। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, चन्नूला श्रीवास, रंजन जी शाहू और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजीविता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बरका काना से अब्दाद दास, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और अफ्ताब मलिक जी। इस गीत के अनुरोध करता है पुणे से पंकज वाड़ोदी, प्रियंका आर्या वाड़ोदी और सोनू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजडवारा से असमान अंसारी, कलीम अंसारी, शमनाम अंसारी, याशिन अंसारी, अफ्ताब जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरा साया साथ होगा। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत थी। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो भाइयों बनो आ तो हती हमारी आज नी सभा। हमें आशा करा कि आज नी सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या एने बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी शको हमारे अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाई नो बोनो आ तो हती हमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।

जय गुरु भाई बहनों, आप सब मेहमान स्वागत करो हूँ अमारी आज ने हाजिर ની સભા મે। આપ સભામરી રહો આપણો સામુદાયિક રેડિયો વોગટ રેડિયો 90.8 FM માતે હું હું આપને હાથે આપની બોનંજલી પારેશર ને આજે વાર બુધવાર ની તારીખ 3 જૂન 2026 નો દાડો હે। ભાઈ બહેનો, અમે દેખી રહ્યા કે આપણે સ્ટુડિયો ની ઘડી મે હાજીના 5 વાગે કહી તવે આપણે શરૂઆત કરા હાજી ની સભા મે પુનઃ પ્રસારિત થવા વાળા કાર્યક્રમો ની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા। सभा ने शुरुआत करेंगे सप्ते के पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जोड़ कार्यक्रम आराधना तक की इनामे अपना हम रंगा आज न सुविचार हाथे भक्तिमय गीता ने अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ेंगा अमारी ने तमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज में आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने जागृति भट्ट ने हाथ दे इनिस कड़ी में भाई बोनो बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत था का जेने के बालकन बालपन इडले कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 6 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मो आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथ दे अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ेंगा अपने किसान भाई बहनों तक की जुड़ू कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर एटले मौन मारे हाथे रहेंगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट इनिस कड़ी में अपना आगाड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून ने नियम तक की जुड़ू कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7 प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मो आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथ दी श्रोताओं बीजू कार्यक्रम शुरू था गा ठीक 7:30 माते कार्यक्रम घूमर आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने मो आपनी बोन अंजलि पारेश्वर भाइन बोनो इन्हें बाद ठीक 8 आप हमरोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी अना साथे मनोरंजन ने थागा पूरी भरमा जिनमें आप हम रोगा कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 माते इन बाद भाई बोनो ठीक 9:10 आप हम रोगा कार्यक्रम शामी कसर तो भाई बोनो आ तो हती अपने हाजिर ની સભા મે પુનઃ પ્રસારિત થવા વાળા કાર્યક્રમો ની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા હવે આપણે સભા ની શરૂઆત કરો ભક્તિ શ્રદ્ધા ને આસ્થા થી જોડ કાર્યક્રમ આરાધના થકી

0: जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाय तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जहाँ हम बात करते हैं युवाओं के जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज का विषय हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहा है कि युवाओं के लिए डिजिटल फास्टिंग क्यों जरूरी है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है। कह सकते हैं कि ऑनलाइन गेम्स, वेब सीरीज और लगातार आने वाली नोटिफिकेशन ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। मनीषा,
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि डिजिटल साधनों ने जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक तो बनाया ही है, लेकिन इसके साथ ही एक नई समस्या भी सामने आई है, वो है डिजिटल ओवरलोड।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, पढ़ाई के बीच में फोन और खाली समय में फोन।
0: जी बिल्कुल
1: दोस्तों, ये सभी आदतें धीरे धीरे एक लत का रूप ले चुकी है। ऐसे में डिजिटल फास्टिंग यानी कि कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के लिए डिजिटल फास्टिंग क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज का युग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही यह हमारी दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: विशेष रूप से कशिश, हम देखते हैं कि युवा वर्ग डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। पढ़ाई, मनोरंजन, मित्रता, जानकारी, श्रोता साथियों, हर चीज अब स्क्रीन के माध्यम से ही हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, डिजिटल फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना। कशिश, हम देखते हैं कि डिजिटल फास्टिंग का अर्थ है जानबूझकर मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल संसाधनों का सीमित या पूर्ण रूप से त्याग कुछ समय के लिए करना, ताकि श्रोता साथियों हम अपने मन और शरीर को संतुलित रख सकें।
1: बिल्कुल,
0: यह ठीक श्रोता साथियों उसी तरह है जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास करते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। दोस्तों, अगर बात करें डिजिटल लत की, तो देखते हैं कि आज के युवाओं में डिजिटल लत तेजी से बढ़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसके ढेर सारे कारण हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोवर्स की चाह हमारे युवाओं को रहती है।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण वे पूरे दिन मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं।
0: जी हाँ।
1: साथ ही दोस्तों, लगातार नोटिफिकेशन आना, जिसकी वजह से युवाओं में मोबाइल के प्रति आकर्षण बढ़ गया है। साथ ही ऑनलाइन गेम्स की लत भी है, और कह सकते हैं कि अकेलेपन से बचने का प्रयास भी हमारे युवा साथी करते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, धीरे धीरे ये सभी आदतें समय की बर्बादी से आगे बढ़कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हम पूरे दिन मोबाइल का यूज करते हैं और फिर इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर बात करें मनीषा डिजिटल ओवर यूज यानी कि डिजिटल संसाधनों का ज्यादा उपयोग करने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य पर पहला प्रभाव पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि लगातार स्क्रीन पर रहने से तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ता है। साथ ही दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कमतर महसूस करना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। साथ ही पढ़ाई या किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे युवाओं के लिए, और वे हर कुछ मिनट में फोन चेक करते रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिससे उनका दिमाग भी पढ़ाई में नहीं लगता है और अस्थिर रहता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो आपने श्रोता साथियों को बताया कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जी,
0: तो श्रोता साथियों, लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने से आंखों पर दबाव बढ़ता है, जिससे डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है साथियों। इसके अलावा गलत मुद्रा में बैठने से गर्दन और पीठ दर्द की समस्याएं भी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: रात को देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद भी प्रभावित होती है साथियों, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को कम कर देती है।
1: जी जी,
0: इससे श्रोता साथियों नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन थकान हमें महसूस होती है। श्रोता साथियों, डिजिटल फास्टिंग अपनाने से शरीर को आराम मिलता है, नींद बेहतर होती है और साथ ही कशिश व्यक्ति अधिक समय तक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं डिजिटल फास्टिंग को लेकर, तो ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों हम जान पाए थे गीत से पहले कि डिजिटल ओवरयूज के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें हमने जाना था कि इसका हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: और नींद की समस्या भी हमें हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर बात करें रिश्तों की मनीषा, तो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय लोग स्क्रीन में ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं, जिसके कारण लोगों का भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जो कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए दोस्तों युवाओं के लिए डिजिटल फास्टिंग करना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि अगर हमारे युवा साथी डिजिटल फास्टिंग को अपनाते हैं तो इससे उनको मानसिक शांति मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दोस्तों डिजिटल फास्टिंग मन को शांत करता है। जब हम नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया से दूर होंगे तो दिमाग को आराम मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही पढ़ाई और काम में ध्यान केंद्रित करना भी आसान हो जाएगा, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। मनीषा, देखते हैं कि डिजिटल फास्टिंग से नींद बेहतर रहेगी और शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम मिलेगा।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब हम डिजिटल दुनिया से दूर होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: यह समय आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण है श्रोता साथियों। इसके अलावा श्रोता साथियों, डिजिटल उपकरणों से दूर रहने पर रचनात्मकता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: युवा नए नए विचारों पर सोचते हैं कशिश, किताबें पढ़ते हैं, चित्रकारी करते हैं और लेखन और अन्य रचनात्मक कार्यों में भी समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि युवा जीवन का वह चरण है जहां आदतें बनती हैं साथियों और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि इस समय डिजिटल लत लग जाती है तो यह भविष्य के विकास में बाधा बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए युवा साथियों के लिए डिजिटल फास्टिंग अपनाना कोशिश अत्यंत आवश्यक है। यह उन्हें अनुशासन सिखाता है, आत्मनियंत्रण बढ़ाता है और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने में भी मदद करता है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, डिजिटल युग में पूरी तरह से तकनीकी से दूर रहना संभव तो नहीं है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल फास्टिंग एक ऐसा माध्यम है जो हमें तकनीकी के दुष्प्रभावों से बचाता है और जीवन में संतुलन लाने में मदद करता है। युवाओं को चाहिए कि वे अपने समय और ऊर्जा को सही उपयोग करें और डिजिटल दुनिया में खोने की बजाय वास्तविक जीवन को महत्व दें। डिजिटल फास्टिंग को अपनाकर वे न केवल अपने मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं कशिश, बल्कि एक बेहतर और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अब यहाँ पर अगर बात करें कि डिजिटल फास्टिंग के क्या तरीके हम अपना सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समय निर्धारित करना होगा।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दिन में कुछ समय नो स्क्रीन टाइम आप रखें, जैसे सुबह उठने के बाद 1 घंटा और रात सोने से पहले 1 घंटा।
1: जी हाँ।
0: अनावश्यक एप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दे साथियों, इससे ध्यान भटकने से बचेगा।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही दिन में एक निश्चित समय ही सोशल मीडिया के लिए आप तय करें। सप्ताह में एक दिन पूरी तरह डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही इसके बजाय आप किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी रुचि के कार्य कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इससे श्रोता साथियों होगा ये कि आप डिजिटल संसाधनों से दूर रहेंगे, जिससे आप अपने काम में भी मन लगा पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं मनीषा कि डिजिटल फास्टिंग केवल एक आदत नहीं बल्कि आत्मविकास का एक साधन है।
1: जी हाँ।
0: जब हम डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं साथियों, तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है, नई चीजें सीखने का समय मिलता है और आपने जैसा कि बताया कि हमारी रचनात्मक शक्ति भी बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है और जीवन के लक्ष्य भी हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने से युवाओं की भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। वे दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने जीवन में असंतुष्ट महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई बार यह असंतोष ईर्ष्या, तनाव, अकेलेपन की भावनाओं को जन्म देता है। श्रोता साथियों, डिजिटल फास्टिंग भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है।
0: जी।
1: जब व्यक्ति खुद के साथ समय बिताता है कशिश, तो वह अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझ पाता है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में खोकर युवा प्रकृति और वास्तविक जीवन के अनुभवों से दूर होते जा रहे हैं। पार्क में खेलना, दोस्तों के साथ बातचीत करना या परिवार के साथ समय बिताना अब बहुत कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल फास्टिंग अपनाने से व्यक्ति इन वास्तविक अनुभवों की ओर वापस लौटता है, वह प्रकृति के करीब जाता है और उसे मानसिक शांति और खुशी मिलती है।
0: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी बातों से हमारे युवा साथियों को ये तो पता चल गया कि डिजिटल युग में तकनीक हमारी आवश्यकता है, लेकिन उसकी अति हमारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि युवा साथी ऊर्जा, सपनों और संभावनाओं का प्रतीक होते हैं। अगर यही ऊर्जा साथियों स्क्रीन की लत में उलझ जाए तो भविष्य की दिशा कमजोर पड़ सकती है।
1: जी बिल्कुल कशिश,
0: इसलिए आपके लिए समझना जरूरी है दोस्तों कि असली जीवन स्क्रीन के बाहर है, वही अनुभव है, वही सीख है और वही सच्ची खुशी है। डिजिटल साधन हमारे सहायक बने, हमारे स्वामी नहीं दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसे में हर दिन कुछ समय खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए आप निकालें। क्योंकि दोस्तों, जो युवा अपने समय और ध्यान को संभालना सीख जाता है, वही अपने भविष्य को भी संवार लेता है।
1: जी हाँ कशिश, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो हमारे युवा साथियों से डिजिटल फास्टिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसे लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: जी हाँ।
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ मनीषा, तो आइए साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम युवाओं के आवाज से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
5: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
6: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है जिद्दी बच्चों को संभालने के तरीके को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: तो कशिश हम देखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण चरण होता है। इस अवस्था में बच्चे मानसिक शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो रहे होते हैं।
0: जी जी।
1: और इसी दौर में बच्चों का व्यवहार भी आकार लेता है जिसमें जिज्ञासा सीखने की उत्सुकता और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश शामिल होती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कई बार इसी विकासशील मन में जिद एक व्यवहार के रूप में उभरती है। हम देखते हैं कि जिद्दी बच्चों को संभालना हर माता पिता के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: एक ऐसा व्यवहार है जिसे यदि सही समय पर समझा या संभाला न जाए तो आगे चलकर यह बच्चों की सामाजिक शैक्षणिक और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि जिद्दीपन क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे हम शांतिपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से बच्चों को सही दिशा में ले जा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इन सभी बातों को लेकर आज हमारे कार्यक्रम में ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाए हम पहले।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं जिद्दी बच्चों को संभालने के तरीकों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: साथियों, अगर यहाँ पर सबसे पहले जाने कि जिद्दीपन का व्यवहार क्या होता है तो आपको बताएं श्रोता साथियों, तो जिद एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया है जिसमें बच्चा किसी की बात को मनवाने के लिए अड़ जाता है, चाहे वह बात उचित हो या फिर नहीं। हम देखते हैं अंजलि जी की जिद्दी बच्चा आमतौर पर बार बार हर कार्य के लिए नहीं कहता है, दूसरों की बात नहीं सुनता है, रो कर चिल्ला कर या फिर धमकी देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है।
1: बिल्कुल
0: इसी के साथ ही हर चीज अपने ढंग से करना वो चाहता है। दोस्तों, ये व्यवहार कभी कभी स्वाभाविक भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये रोजमर्रा की आदत बन जाए तो इन्हें संभालना हमारे लिए जरूरी हो जाता है।
1: जी हाँ, यही बात करें कशिश के जिद्दी बच्चों के क्या लक्षण हो सकते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार बहुत सी बार बच्चे एक ही चीज जिद करते हैं।
0: जी जी,
1: बात न मानने पर रोना, गुस्सा करना या चीजों को फेंकना, ऐसी हरकतें करते हैं। इसी के साथ अपने निर्णय पर अड़े रहना, दूसरों के सुझावों या आदेशों को अनदेखा करना, बार बार चुनौती देना कि आप मुझे रोक नहीं सकते, जैसे बातें वो करते हैं।
0: जी जी,
1: इसी के साथ कोई काम करने से साफ इनकार कर देना, घर के नियमों को न मानना। यदि ये व्यवहार श्रोता साथियों लगातार आपको आपके बच्चों में दिखते हैं तो ये सामान्य जिद से अधिक गंभीर स्थिति बन सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसके लिए हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिरकार बच्चा जिद कर रहा है तो उसके कारण क्या है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अगर हम कारणों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता की खोज की। यानी कि अंजलि जी, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनमें स्वतंत्रता की भावना विकसित होने लगती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में श्रोता साथियों वे अपनी पसंद से चीजें करना चाहते हैं और जब उन्हें रोका जाता है इस चीज के लिए तो वे जिद करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ ही अगर बच्चा महसूस करता है कि उसे परिवार में पर्याप्त ध्यान नहीं मिल रहा है तो भी वह जिद करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है।
1: जी हाँ,
0: वही श्रोता साथियों, कभी बहुत सख्त होना और कभी बहुत ढील देना, यह असंतुलन बच्चे को भ्रमित कर सकता है जिससे भी हम कह सकते हैं कि वह जिद्दी हो जाता है। इसी के साथ अगर पारिवारिक वातावरण की बात करें तो हम देखते हैं अंजलि जी की घर में अक्सर झगड़े या फिर तनाव होने पर बच्चा असुरक्षित महसूस करता है।
1: जी हाँ,
0: और जिद को एक तरह की सुरक्षा के रूप में वह विकसित करना चाहता है। दोस्तों, अगर बच्चा रोने या फिर जिद करने पर मनचाही चीज पा जाता है तो वह सीख लेता है कि जिद करने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि इसमें अभिभावकों की कुछ सामान्य गलतियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल कशिश, अगर बात करें कि क्या ऐसी सामान्य गलतियां होती हैं तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चों की हर जिद हम पूरी कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि माता पिता अक्सर सोचते हैं कि बच्चा खुश रहेगा, लेकिन ये आदत हम देखते हैं कशिश के भविष्य में बड़ा संकट बन जाती है। हम देखते हैं कि बच्चे पहले छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करते हैं और माता पिता पूरी कर देते हैं और वही चीज आगे जाकर बड़ा रूप ले लेती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ गुस्से में प्रतिक्रिया देना, यानी कि बच्चे की जिद्दी व्यवहार पर अगर माता पिता भी चिल्लाए या मारे तो बच्चा और ज्यादा जिद्दी बनता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता को चाहिए कि उन्हें शांत तरीके से इन सारी बातों को बताएं। इसी के साथ तुरंत मना कर देना, यानी कि बिना कारण बताए ना कह देना बच्चों को और ज्यादा अड़ियल बना देता है। ऐसे में अगर हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं बच्चों को तो हमारे मना करने के पीछे कारण बताने होंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सी बार माता पिता बच्चों को बाहर के पेय पदार्थ नहीं खाने के लिए देते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि आखिरकार वो उन्हें बाहर के पेय पदार्थ जो डिब्बा बंद होते हैं वो खाने क्यों नहीं दे रहे हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। जब हम उन्हें इन सारी चीजों से अवगत करवाएंगे तो वो हमारी बात को मानने की पूरी कोशिश करेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: इसी के साथ दूसरे बच्चों से तुलना करना, हम देखते हैं कि देखो वो कितना समझदार है, जैसे तुलना बच्चों को और ज्यादा चिढ़ा सकती है। तो ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना ना करें, हमेशा बच्चों को अपने स्तर पर बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश करें ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी प्रकार के द्वेष को अपने मन में न पालें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही हैं, ये बातें और भी है जो आगे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
2: tik tak tak tik tak tik tak

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों के जिद करने के तरीके होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या माता पिता सामान्य गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बचपन की हुई जिद बच्चों की बड़े होकर बड़ा रूप ले लेती है।
1: बिल्कुल
0: यही बात करें कि जिद्दी बच्चों को संभालने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय हमें अपनाने हैं, तो सबसे पहले बात आती है शांतिपूर्वक सुनने की। श्रोता साथियों, सबसे पहले बच्चों की बात आपको ध्यान से सुननी है, उनकी बातों को पूरी तरह समझिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। इसी के साथ बात करें, आदेश न दें, यानी कि तुम्हें ऐसा करना ही है की जगह क्या हम ऐसा करके देखें जैसी भाषा हमें अपनानी है।
1: जी जी।
0: इसी के साथ सीमाएं तय करनी है, यानी कि कशिश स्पष्ट नियम बनाने हैं और उनके पालन पर जोर देना है। जैसे टीवी रोजाना केवल 30 मिनट तक ही देखनी है और पढ़ाई कितने मिनट करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी चीजों का हमें शेड्यूल बनाना होगा। जब बच्चों की दिनचर्या व्यवस्थित होगी, समय प्रबंधन की सीमाएं सारी तय होंगी, तो बच्चा उसी अनुरूप व्यवहार करना जीवन में सीख पाएगा।
1: जी हाँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी सराहना भी आप करें, यानी कि आप उसे स्टार दे सकते हैं, तारीफ उसकी कर सकते हैं या फिर पसंदीदा गतिविधि करने पर इनाम भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ दोस्तों, विकल्प भी आप अपने बच्चे को दे, जैसे कि आप उन्हें कह सकते हैं कि तुम दूध पहले पियोगे या फिर नाश्ता। ऐसा विकल्प देकर आप बच्चे को निर्णय लेने का मौका देंगे साथियों, जिससे जिद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ ही बच्चा कब चिड़चिड़ा होता है, किस समय ज्यादा जिद करता है, इसका भी आप ध्यान रखें और पहले से ही इन सभी चीजों की आप तैयारी कर लें।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ अंजलि जी, हम बच्चों के साथ सकारात्मक संवाद भी स्थापित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि हमेशा हमें आंखों में देखकर बच्चों की बात करनी है, उनका नाम लेकर उन्हें पुकारना है, अपनी बात शांत और स्पष्ट और प्रेम पूर्वक तरीके से कहनी है साथियों। नहीं की जगह हमें हाँ लेकिन बाद में कहकर उन्हें संबोधित करना है।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ ही जिद न करने पर तुरंत आप प्रशंसा उनकी कर सकते हैं। साथियों, आप अपने बच्चे को ये महसूस कराएं कि आप उसकी भावनाओं को कैसे समझते हैं।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आप उनसे कहेंगे कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी चॉकलेट चाहिए, लेकिन हम खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि बच्चा अगर होमवर्क नहीं करता है तो उसे अगली बार क्लास में दिक्कत आएगी। जिसे शांति से इन सारी चीजों को हमें समझाना है। जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद करे तो उसे 2 से 5 मिनट अकेले शांत जगह पर बैठने हमें देना है। बच्चों को मारने डांटने से डर लगता है, लेकिन डर से स्थायी बदलाव नहीं आता है। इसलिए कठोर दंड नहीं, सशक्त संवाद हमें बच्चों से करना है। इसी के साथ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हर व्यवहार के पीछे कुछ कारण होता है, यानी कि बच्चे का हर जिद्दी व्यवहार किसी कारण से जुड़ा होता है, जैसे कि असुरक्षा, थकावट, अपेक्षा या कोई मानसिक उलझन। यदि आप कारण को पहचान पाएंगे तो समाधान आसानी से हो पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को उनके भावनाओं के बारे में समझाना जरूरी है, जैसे कि गुस्सा आना ठीक है लेकिन गुस्से में चिल्लाना सही नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तुम उदास हो लेकिन जिद करके समस्या हल करना नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो माता पिता को बच्चों को समझानी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हर बच्चा एक अनोखा संसार है। कुछ बच्चे फूलों की तरह होते हैं, थोड़ी सी धूप और थोड़े से पानी से खिल जाते हैं। कुछ पत्थरों जैसे होते हैं जिन्हें समय, धैर्य और समझ से तराशना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और कुछ बच्चे आग की तरह होते हैं जिन्हें अगर सही दिशा दी जाए तो वे दुनिया को रोशन कर सकते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, जिद्दी बच्चा कोई समस्या नहीं है, वो बस आपकी आंतरिक समझ और प्रेम चाहता है।
1: बिल्कुल।
0: याद रखें, एक दिन वही जिद्दी बच्चा अपने आत्मविश्वास, दृढ़ता से दुनिया बदल सकता है अगर आप उसका हाथ थाम कर रखें।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख भी रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको यहाँ पर मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन को अब हम यही समाप्त करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाघधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावरामर हित्ता किसान भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलिनु
0: राम राम, राम। होवे भाई बहनों आप सब हामली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में
1: होवे भाई बहनों लेने हाजिर थे गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज के कार्यक्रम में अपने भाई बहनों की बातचीत नु विषय है कि वर्षा ऋतु में अपने पशु ने देखभाल हरते कर
0: होवे
1: आपने देखो हां कि वर्षा ऋतु जे है एनु सामान्य जे टाइम है ये जून तक ही लेने 15 सितम्बर उधी रहे है आ मौसम न केवल अपने फसलों ने जीवनदान आले है बल्कि पशुपालक बल्ले घना कानी चुनौती लेने आवे है अनी टाइम अपने जे पशुपालक भाई बुन है एना ने हमें घना कानी चुनौती रहे है क्योंकि आ टाइम गर्मी ने उमस भर्यो तकु रहे है एवं में पशु ने स्वास्थ्य माते विपरीत प्रभाव पड़ी सके जेने कारण अपने जे पशुपालक भाई है एना ने समस्या वधी सके एटले अपने पशुपालक जे भाई बुन है एना ने पशु ने देखभाल माते विशेष ध्यान आलवानी सूरत है ई हरते एणाने देखभाल करी हूँ एणाने खावाना में आली ने हरते टीकाकरण करावे ई हंगरी वाते आज आपणे कार्यक्रम में करवा वारो हूँ
0: हुवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपणे भाई बोनो कदी घणा आकानी वाते रींगा अबर हामळा गीत ने मोरे कर आपणी वाते
1: होवे तो भाई बोनो आप हमळते रेसु आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते

0: माटी में जन्मी हूँ और माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया मैं फसल बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार के नती सूरी जन्म तकीस हकदार है कानूने आ बात मानी है न पन्या पूटे एवं हक को ले सके न रिवाज और सच ने बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना कदम है ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: सेहत नु राज हूं है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह होवे सेहत है असली धन आपरू आज जीवन नो सहारो है आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित भाइयों बहनों जरूर ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं माँ जंगल तक की जरूर बोले में रिश्तो है जे जंगल में रोजे हैं ई उन्होंने रक्षा करे हैं तो आओ बोला नी भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा बोला नी आवाज विकास में असली पहचान है
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है कि डरने के बजाय सजग अवलोकन का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि श्रोता साथियों आपको इस विषय के बारे में बताए, तो जीवन की हर चुनौती, हर निर्णय और हर सफलता से जुड़ा हुआ ये विषय है कि डरने के बजाय सहज अवलोकन का महत्व क्या है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगते हैं, लेकिन यदि हम उसी समय थोड़ी देर रुककर परिस्थिति का सजग अवलोकन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो वही डर हमारे लिए सीख और अवसर में बदल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी कि सजग अवलोकन क्या होता है और ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि डर के बजाय सजग अवलोकन का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, डर एक स्वाभाविक भावना है, ये हमें संभावित खतरों से सावधान रहने का संकेत देती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब डर हमारी सोच और निर्णय क्षमता पर हावी हो जाता है तब ये हमारी प्रगति में बाधा बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अक्सर हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम ठीक से समझा नहीं पाते। परीक्षा का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर, लोगों की आलोचना का डर, ये सारे जो डर हैं वो हमारी कल्पनाओं से पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब हम केवल डर को देखते हैं तब समस्या बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब हम स्थिति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हैं तब समाधान भी दिखाई देने लगते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अब यही बात करें कि सजग अवलोकन क्या है। तो श्रोता साथियों, किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति, समस्या या घटना को बिना घबराए, बिना पूर्वाग्रह के और पूरी जागरूकता के साथ देखना और समझना। जब हम सजग होकर अवलोकन करते हैं जागृति जी, तब हम केवल सतह नहीं देखते बल्कि कारणों को भी समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उदाहरण के लिए, यदि खेत में फसल कमजोर हो रही है तो घबराने के बजाय किसान मिट्टी, पानी, खाद और मौसम का अवलोकन करता है। यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है तो समझदार अभिभावक उसे डांटने के बजाय उसकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं।
0: जी हाँ।
1: यदि समाज में कोई समस्या है तो उसका समाधान केवल शिकायत करने से नहीं बल्कि उसके कारणों को समझने से निकलता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सजग अवलोकन हमें वास्तविकता से जोड़ता है, जबकि डर हमें भ्रम और आकांक्षाओं में उलझा देता है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में कम अंक मिल जाए, यदि वो डर जाएगा तो वो स्वयं को असफल मानने लगेगा अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि वो सजग अवलोकन करेगा तो वो समझेगा कि गलती कहाँ हुई है, तैयारी में क्या कमी रह गई है और आगे कैसे सुधार किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: डर समस्या को बड़ा बनाता है जबकि अवलोकन समाधान का रास्ता दिखाता है। डर कहता है तुम नहीं कर सकते, सजग अवलोकन कहता है देखो, समझो और फिर प्रयास करो।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कि आज के जो श्रोता साथी है वो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अंजलि, जैसे कि पढ़ाई हो गई, करियर, प्रतियोगिता, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंताओं के बीच कई बार ये तनाव और डर का शिकार हो जाते हैं। यदि श्रोता साथी केवल डर के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो वे अपने अवसर खो देंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि वे परिस्थितियों को समझेंगे, सही जानकारी जुटाएंगे और धैर्य पूर्वक सोचेंगे तो वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप आत्मविश्वासी बनिए, ये हमें गलत रास्तों और अफवाहों से बचाएगी तथा सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, सच्चे स्वराज में सजग अवलोकन का एक अलग ही महत्व है।
0: बिल्कुल।
1: स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है श्रोता साथियों, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों में स्वराज का अर्थ था अपने ऊपर शासन करना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना और सही दिशा में उनका उपयोग करना।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर डर जाता है तो वह अपने मन का मालिक नहीं रह जाता, लेकिन जब वह शांत होकर परिस्थिति का अवलोकन करता है तब वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनता है। यह आंतरिक स्वतंत्रता सच्चे स्वराज की नींव है। स्वराज का अर्थ है जागरूक नागरिक बनना, सही और गलत को समझना, समस्याओं से भागना नहीं, समाधान खोजने की आदत विकसित करना और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना।
0: बिल्कुल अंजलि, यही हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें कहना चाहेंगे कि प्रकृति से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जैसे कि प्रकृति हमें सजग अवलोकन का अद्भुत संदेश देती है।
1: बिल्कुल।
0: किसान बीज बोने के बाद हर दिन खेत का निरीक्षण करता है, वो घबराकर फसल को खींचकर पड़ा नहीं करता बल्कि धैर्य और अवलोकन के साथ उसकी देखभाल करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार हम देखें कि पक्षी भी घोंसला बनाने से पहले आसपास के वातावरण को ध्यान से देखते हैं, वे जल्दबाजी नहीं करते बल्कि सही स्थान चुनते हैं। प्रकृति का हर जीव हमें ये सिखाता है श्रोताओं की सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सजगता भी जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बात चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें सजग अवलोकन करना है, यही बात करें तो आज समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: बेरोजगारी, पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और डिजिटल भ्रम, यदि हम केवल डरते रहेंगे श्रोता साथियों तो समाधान नहीं खोज पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: यदि हम समस्याओं का गहराई से अध्ययन करेंगे, कारणों को समझेंगे, मिलकर काम करेंगे तो बदलाव संभव है।
1: बिल्कुल,
0: एक जागरूक समाज डर से नहीं बल्कि समझ से आगे बढ़ता है और इस समझ के लिए हमें सजग अवलोकन की आदत को विकसित करना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: इसके लिए हमें तुरंत निष्कर्ष पर नहीं जाना है, हमें उस घटना को देखकर उसकी पूरी छानबीन करनी है और निर्णय पर जाना है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब हम तुरंत निर्णय पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो कार्य है वो बिगड़ने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, प्रश्न पूछें, क्योंकि हर समस्या के पीछे कारण अवश्य होता है। अपने आप से पूछें कि यह क्यों हुआ, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, और शांत रहना सीखें।
1: जी हाँ।
0: घबराहट में जागृति जी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए शांत रहकर हम बेहतर तरीके से जब स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हम निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों ने एक नया व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया। अचानक बाजार में मंदी आ गई। पहला युवक डर गया, उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया और उसने प्रयास करना छोड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: दूसरे युवक ने स्थिति का सजग अवलोकन किया, उसने देखा कि लोगों की जरूरतें बदली है, उसने अपने काम में बदलाव किया है और नई मांग के अनुसार सेवाएं देने लगा है। कुछ समय बाद उसका व्यवसाय सफल हो गया। जब उससे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मैंने डर को नहीं परिस्थिति को देखा है। ये कहानी श्रोता साथियों हमें बताती है कि कठिन समय में घबराने के बजाय समझदारी से स्थिति का अध्ययन करना बहुत लाभदायक होता है।
0: बिल्कुल।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले स्वयं को शांत रखना जरूर सीखे। जब मन शांत होता है तभी सही अवलोकन संभव होता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, किसी भी सूचना या परिस्थिति को तुरंत सही या गलत मानने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। तीसरा, अधिक सुने और कम प्रतिक्रिया दें। कई बार उत्तर हमारे सामने ही होता है अंजलि, लेकिन जल्दबाजी के कारण हम उसे देख नहीं पाते।
0: जी जी।
1: और इसी के साथ चौथा है श्रोता साथियों कि अपने अनुभव से सीखे। हर सफलता और असफलता एक शिक्षक की तरह होती है। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि शांत मन और खुला विचार सजगता का यही आधार है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी रास्ते अनजान होंगे और कभी परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होंगे, लेकिन ऐसे समय में अंजलि हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
0: जी जी।
1: याद रखिए, डर आंखों के सामने धुंध पैदा करता है, जबकि सजग अवलोकन उस धुंध को हटाकर सच्चाई दिखाता है। और जो व्यक्ति परिस्थिति को समझना सीख जाता है वो कठिनाइयों के बीच भी अवसर खोज ही लेता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि जीवन में चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होंगी। हर दिन कोई नई परिस्थिति, नया प्रश्न और नई परीक्षा सामने आएंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये हमारे हाथ में है श्रोता साथियों कि हम उसका सामना कैसे करें। क्या हम डर के कारण पीछे हटेंगे या फिर सजग होकर परिस्थिति को समझने और उसका समाधान खोजेंगे।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए कि अंधेरे कमरे में खड़े होकर डरते रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन यदि हम एक दीपक जलाकर चारों ओर देखना शुरू करें तो रास्ता दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कह सकते हैं जागृति जी कि सजग अवलोकन वही दीपक है जो भ्रम को दूर करता है और समझ की रोशनी फैलाता है। सच्चा स्वराज तब शुरू होता है जब हम अपने मन के डर को पहचानते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और जागरूकता के साथ जीवन का सामना करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें संकल्प लेना है कि हम हर समस्या को घबराहट से नहीं समझदारी से देखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: हर चुनौती से भागेंगे नहीं बल्कि उससे सीखेंगे और डर के बजाय सजग अवलोकन को अपना साथी बनाएंगे।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जीवन की राह में अंधेरा तब नहीं होता जब समस्या सामने आती है। अंधेरा तो तब होता है जब हम डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: डर हमें कमजोर बनाता है, जबकि सजग अवलोकन हमें सच्चाई से परिचित भी कराता है। जब हम परिस्थितियों को ध्यान से देखते हैं अंजलि, समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तब वही कठिनाइयां हमारे लिए सफलता की सीढ़ियां बन जाती है।
0: जी जी।
1: इसीलिए याद रखिए श्रोता साथियों, नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से डर कर रुकती नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपना मार्ग बना लेती है।
0: बिल्कुल।
1: उसी प्रकार जीवन में भी हमें डर कर पीछे नहीं हटना है, बल्कि सजग होकर परिस्थितियों को परखना है, क्योंकि जो व्यक्ति देखने समझने और सीखने की कला सीख लेता है उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम डर के नहीं समझदारी और सजगता के साथ जीवन जिए। हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।
0: जी,
1: क्योंकि डर कदमों को रोकता है, सजग अवलोकन रास्ते खुलता है। जो जीवन को ध्यान से पढ़ता है अंजलि, वही अपनी मंजिल खुद लिखता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: एवो केवाई जयवीरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तयवीरे पूरा परिवार मजबूत बने हैं, पर मजबूती खाली शब्द के वाद की नती आती आवे है अधिकार थकी सुरक्षा थकी अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी। जमीन पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है, इने मले है आत्मविश्वास रुपया नी सुरक्षा अने आपरा फैसला खुद लेवानी ताकत। तो आओ बनो आजे मली नी आवाज उठावो, एटले हंगरी सूर्य हंगरी बुने हंगरी माए आपरा हक ने जमीन माते गर्व थकी उभी थई शके। बोन ने अधिकार किम की अधिकारस असली ताकत है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल रह हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
5: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
4: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
5: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
6: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं हमारा प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी समस्या की जो आज गांव से लेकर शहर तक लाखों युवाओं के मन में चिंता, डर और निराशा पैदा कर रही है, यह है बेरोजगारी। कहना चाहूंगी श्रोता,

साथियों कि जब पढ़ाई पूरी हो जाए, मेहनत करने की इच्छा भी हो लेकिन काम न मिले, जब घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हों, जब लोग पूछे कि अब क्या कर रहे हो और हमारे पास कोई जवाब न हो, तब मन टूटने लगता है। लेकिन साथियों याद रखिए कि बेरोजगारी जीवन की हार नहीं है, यह संघर्ष का एक दौर है। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह मुश्किल समय भी हमेशा नहीं रहता। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बेरोजगारी में किस तरीके से उम्मीद हमें बनाकर रखनी है ताकि हम हमारे जीवन में कई सारी परेशानियों से बचे रहें। तो बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए कार्यक्रम का सुनते हैं पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि बेरोजगारी में उम्मीद कैसे बनाए रखें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बेरोजगारी केवल पैसों की नहीं मन की भी समस्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बेरोजगारी का मतलब सिर्फ नौकरी न होना है, लेकिन दोस्तों ये बात कोई सच नहीं है। सच ये है कि बेरोजगारी इंसान के आत्मविश्वास को भी कमजोर करने लगती है। धीरे धीरे मन में कई सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्या मेरी पढ़ाई बेकार हो गई, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में उठते हैं और यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि काम न मिलना आपकी काबिलियत की कमी नहीं है। कई बार परिस्थितियाँ, अवसर और समय हमारे अनुसार नहीं होते, इसलिए खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। यही अब बात आती है कि आखिरकार ऐसी स्थिति में हम उम्मीद कैसे बनाए रखें या उम्मीद क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, उम्मीद वह ताकत है जो इंसान को गिरकर भी उठना सिखाती है। जिस व्यक्ति के पास उम्मीद होती है ना दोस्तों, वह खाली हाथ होकर भी आगे बढ़ता रहता है। कहते हैं ना कि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उस दिन वह कोशिश करना भी छोड़ देता है। अगर किसान पहली फसल खराब होने पर खेती छोड़ दे, अगर बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे, अगर पक्षी हवा के डर से उड़ना छोड़ दे, तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कठिन समय में उम्मीद बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ अब बात आती है दोस्तों कि बेरोजगारी में उम्मीद बनाए रखने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। आज सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई देती है। कोई नौकरी में, तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई विदेश चला गया। ऐसे में दोस्तों बेरोजगार जो युवा हैं वो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि हर इंसान की जिंदगी का समय अलग होता है। किसी ने क्या खूबी कहा है कि किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा मत रोकिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आज कोई आपसे आगे है, लेकिन कल आपकी मेहनत आपको उससे भी आगे ले जाए। इसलिए खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। बेरोजगारी का समय केवल इंतजार करने का समय नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। नई चीजें सीखिए, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल से काम, ऑनलाइन फॉर्म भरना, सिलाई, खेती की नई तकनीक, पशुपालन, बोलने की कला, छोटा व्यापार, सोशल मीडिया का सही उपयोग। आज ये जो हुनर है वो बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि जिसके पास हुनर है उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो जैसा कि कार्यक्रम में दोस्तों हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि बेरोजगारी में भी हम उम्मीद बनाकर कैसे रख सकते हैं और हम इसे कैसे बनाकर रखें, ये हम जान पा रहे हैं। बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बेरोजगारी केवल पैसों की नहीं मन की भी समस्या है, इसी के साथ हम जान पाए कि उम्मीद क्यों जरूरी है। यही हम जान रहे थे कि बेरोजगारी में उम्मीद बनाए रखने के क्या तरीके हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहला तरीका हमने जाना कि खुद को दूसरों से तुलना करना हमें बंद करना है। दूसरी बात हमने जानी कि खाली हमें नहीं बैठना है, हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहने की जरूरत है। इसी के साथ छोटे काम को छोटा मत समझिए। अक्सर हम देखते हैं ना दोस्तों कि कई युवा केवल बड़ी नौकरी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब तक बड़ा अवसर मिले तब तक छोटे काम भी अनुभव देते हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, दुकान संभालना, ऑनलाइन काम करना, खेती में नई शुरुआत, घर से छोटा व्यवसाय, हस्तकला, डेयरी, फूड स्टॉल। कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम की एक अलग ही पहचान होती है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटे काम अक्सर बड़े सपनों की नींव बनते हैं। इसलिए दोस्तों, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा जरूरत मानसिक मजबूती की होती है। कुछ लोग ताने मारेंगे, कहेंगे कि अभी तक नौकरी नहीं मिली, इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, फलाने का लड़का तो देखो बहुत आगे निकल गया है। लेकिन दोस्तों, दूसरों की बातें सुनकर हमें खुद को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि दुनिया की आवाज से ज्यादा जरूरी है अपने मन की आवाज को सुनना। और जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमें अपने मन को टूटने नहीं देना है। हालांकि एक बात ये भी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहां गलतियां हो रही है वो पहचान हम जरूर करें, ताकि हम समझ पाए कि कहां गलती हुई है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। कहना चाहूंगी दोस्तों कि जिस माहौल में केवल निराशा हो वहां उम्मीद टिक नहीं पाती, इसलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें प्रेरित करें, आगे बढ़ने की बात करें, नई सोच दें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं। अच्छी किताबें हमें पढ़नी होंगी, प्रेरणादायक कार्यक्रम हमें सुनने होंगे और सफल लोगों की कहानियां जाननी है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं और जहां उम्मीद नहीं होती है वहां भी उम्मीद की नई किरण जगने लगती है। यही एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मैं ये बात आपको समझाना चाहूंगी कि एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ने पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं मिली। पहला जो दोस्त था वो रोज दुखी रहता, लोगों से छिपता और धीरे धीरे निराश हो गया। दूसरे दोस्त ने सोचा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं कुछ नया सीखता हूँ। उसने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, धीरे धीरे गांव में उसका नाम चल पड़ा। कुछ साल बाद उसने अपनी दुकान खोल ली। एक दिन पहला दोस्त बोला, तुझे डर नहीं लगा था? दूसरा मुस्कुराकर बोला, डर तो था लेकिन मैंने डर से बड़ा अपना हौसला रखा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कई बार जिंदगी नौकरी से नहीं सोच बदलने से बदलती है। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि हमने बहुत ज्यादा बड़ी पढ़ाई कर रखी है, हमें बड़ी जॉब मिलनी चाहिए, हो सकता है कि वो चीज हमारे किस्मत में ही ना हो। अगर वो होगी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें खाली नहीं बैठना है, हमें कुछ नया अलग करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी हम अपने मन को टूटने न दें, हमारे मन की जो उम्मीद है वो कहीं टूटे ना। और बहुत से लोगों से बहुत सी बार हमें बहुत सी चीजें सुनने मिलती है, वो भी हमें सुनने को ना मिले। इसलिए दोस्तों, बेरोजगार व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत सहारे की होती है, ताने की नहीं। इसलिए परिवार को चाहिए कि वो उसका हौसला बढ़ाए, तुलना न करें, धैर्य रखें और मानसिक सहयोग दें, क्योंकि एक अच्छा शब्द किसी टूटे इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। साथियों, अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भविष्य खत्म हो गया है। याद रखिए कि हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष देखा है, हर जीत से पहले मुश्किलें तो आती ही हैं और हर अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। इसलिए धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत होता है। इसलिए दोस्तों, बेरोजगारी एक कठिन दौर जरूर होता है, लेकिन यह जिंदगी का आखिरी सच नहीं है। यह समय हमें धैर्य, मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास सिखाता है। जरूरी यह नहीं है श्रोता साथियों कि आज आपके पास क्या नहीं है, जरूरी यह है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा कितनी है। अगर मन में उम्मीद जिंदा है, अगर कदम चल रहे हैं, अगर सीखने की इच्छा बाकी है, तो विश्वास रखिए कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं ना दोस्तों, जो मुश्किल समय में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। तो आप भी दोस्तों अपने
सपनों को बनाकर रखिए और मुश्किल घड़ी में उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद से ही हमारा जो जीवन है वो सफल बनता है। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है कि बेरोजगारी में भी उम्मीद हमें बनाकर कैसे रखनी है, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
2: जागृति बुन आपके कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का
2: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाय तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का?
0: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बूंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: चुपके से आपकी धड़कन में उतर जाएंगे, राहें उल्फत में आज हद से गुजर जाएंगे, टूट के आप हमें इस कदर जो चाहेंगे, हम तो पाहों की पनाहों में पिघल जाएंगे।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।